सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 28वीं तिथि। तदनुसार 19 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 30 सेकंड होने को है। आरंभ होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम चिंतन। विषय है कर्तव्य का सामान्य अर्थ।

0: कर्तव्य का सामान्य अर्थ उस कार्य से है जिसे करना उचित या आवश्यक हो। उर्दू में कर्तव्य का निकटवर्ती शब्द फर्ज है, जिसका अर्थ है ईश्वर की ओर से लगाया हुआ धार्मिक कृत्यों का आदेश। बाइबल में कर्तव्य पालन इसी अर्थ में लिया जा सकता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन ही कर्तव्य पालन है। अब ईश्वर की आज्ञा क्या है? बाइबल में प्रभु ईसा कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। स्वयं प्रभु ईसा ने पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार मानव मात्र के प्रति प्रेम के कारण क्रूस पर अपनी बलि दे दी और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। ये उदाहरण ये दर्शाता है कि कर्तव्य के मूल में प्रेम की भावना का होना अति आवश्यक है। प्रेम से विहीन बड़ा से बड़ा कार्य भी निष्प्रभ और बेकार है। प्रभु ईसा शास्त्रियों को इसी कारण फटकारते हैं, क्योंकि शास्त्री संहिता का पालन लोगों की वाहवाही लूटने के लिए करते हैं, दिखावे के लिए वे लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। कर्तव्य पालन में प्रेम की महत्ता को स्वीकारते हुए लिखा गया है, मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ लाभ नहीं। बाइबल में कर्तव्य पालन ईश्वर की आज्ञा के पालन के साथ साथ पारिवारिक जीवन के संदर्भों, पति पत्नी और बच्चों के बीच के संबंधों और मनुष्य के शारीरिक और मानसिक कार्यों के साथ भी जुड़ा है। पति पत्नी के कर्तव्यों में ये प्रमुख है कि वे एक दूसरे को उसी तरह प्यार करें मानो दूसरा उसका अपना शरीर हो। बच्चों के लिए लिखा है कि वे माता पिता की आज्ञा माने, उन्हें आदर दें, जिससे उनका कल्याण होगा और वे बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहेंगे। पिता अपने बच्चों को खिझाया नहीं करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। नियोजक और श्रमिक तथा दास और स्वामी सभी से ये कहा गया है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन मनुष्यों को दिखाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। वे अपना कार्य आनंदपूर्वक करें, प्रभु उन्हें पुरस्कृत करेंगे। बाइबल के इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन ही सही कर्तव्य पालन है, और कर्तव्य पालन का मूल प्रेम ही चित है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने धार्मिक और सांसारिक कर्तव्यों का पालन प्रेम पूर्वक, आनंद के साथ, अपने निजी स्वार्थ और दिखावटीपन को त्याग कर करना चाहिए। इसी भावना से किया गया कार्य बाइबल के अनुसार सच्चा कर्तव्य पालन है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना।

जोतों वाली माँ, छत्रों वाली माँ वैष्णो देवी की छत्र छाया में आए सवाली भक्तों के कदम जैसे जैसे माँ की ओर बढ़ते हैं, महिमा वैष्णो देवी की उनके दुख हर सुखों से उनकी झोलियां भर देती हैं। मुक्तिदायिनी माँ के द्वार पर हर

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित्र मानस गान का आज का भाग, भाग 35,
1: एपिसोड 35, 3-5।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित्र मानस गान का आज का भाग, भाग 35। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए अब आपको जानकारी दे दे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी चाहत, और 10:30 का समय होगा।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा,

स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। पेश है परिवार कल्याण पर आधारित कार्यक्रम घर संसार। भेंटवार्ता, दांतों की समस्या और हमारा स्वास्थ्य। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर उदीपन कुमार और भेंट करता है श्वेता रानी।
1: हम सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए दांतों की सुरक्षा या दांतों का सेहत भी बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से हमें दांतों की देखभाल करनी चाहिए ताकि हमारे दांत जो है वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है दंत चिकित्सक डॉक्टर उद्दीपन कुमार जी को। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: धन्यवाद श्वेता जी।
1: दांतों की सुरक्षा कितनी जरूरी है हमारे सेहत के लिए?
2: कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मुंह का होना बहुत आवश्यक है। कई सारी बीमारियां जो है जो हमारे मुंह से शुरू होती है और वही आगे जाकर के बाकी शरीरों में फैल जाता है।
1: दांतों में आमतौर पर किस किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बुरा हो सकता है?
2: दांतों से संबंधित नॉर्मली तीन तरीके की बीमारियां देखी जाती है। एक वैसी बीमारियां जो सीधा हमारे दांतों के ऊपर में प्रभाव डालती है, जैसे कि कैविटी हो जाना दांतों में, जिसको कि जनरल टर्म में कीड़ा लगना कहते हैं। वो कैविटी बेसिकली हमारे मुंह में जो है सही तरीके से साफ सफाई नहीं रहने की वजह से होता है। दूसरा असर जो है हमारे मसूड़े पे पड़ सकता है, जो हमारे दांत के चारों तरफ जो है हड्डी होती है जो दांत के जड़ों को सही तरीके से पकड़ करके रखती है और उसके ऊपर में एक कवर होता है जिसको हम लोग जनरल टर्म में मसूड़ा कहते हैं। तो अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उससे हमारे दांत के ऊपर में कीड़ा लग सकता है, मसूड़े के ऊपर में जो है सूजन आ सकता है, और अगर हम सही समय पे उसका उपचार ना करें तो वही मसूड़े का सूजन अंदर में हड्डी में लग जाता है जिसको कि हम लोग पायरिया कहते हैं। तो इसलिए दांतों का सही रखरखाव करना बहुत आवश्यक।
1: आपने कहा कैविटी, बच्चों में तो चॉकलेट किट्स वगैरह ज्यादा खाने की वजह से हो जाती है, बड़ों में किस वजह से ये होती है?
2: जो हम लोगों का अपब्रिंगिंग है या बचपन से जो है हम लोगों का पालन पोषण है, उसमें दांतों के संबंध में, उसके रखरखाव के संबंध में सही तरीके से माता पिता को पता नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि शुरू में हमारा दूध का दांत निकला है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो डेंटिस्ट को तब तक कंसल्ट नहीं करते हैं जब तक कि वो बहुत बड़ा न हो जाए बीमारी और वो किसी तरीके से आपको तकलीफ न पहुंचाने लग जाए। तो सबसे पहला सलाह जो हम सारे श्रोताओं को देना चाहेंगे वो ये है कि दांतों के लिए सबसे पहला कंसल्टेशन डेंटिस्ट के पास तब आना चाहिए जब आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, लाइक माता के प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज उस दौरान जो है अगर माँ के मुंह का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उसका कई सारा कुप्रभाव आने वाले बच्चे के ऊपर में पड़ता है। जैसे अगर बच्चे का वेट कम होगा, कुपोषण का शिकार हो सकता है, अगर मुंह का इन्फेक्शन है तो उससे जो है कई सारी और भी बीमारियां पैदा हो सकती है। तो जिसके बारे में सही जानकारी होना आवश्यक है, और इसीलिए जब आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो उसी वक्त एक बार अपने डेंटल चेकअप के लिए जरूर आना चाहिए।
1: तो किस किस तरह के कारण आमतौर पर दिखाई देते हैं जब गर्भावस्था में होती है महिला?

0: जाए।
1: देखिए, जब आप बच्चे का प्लानिंग करते हैं उसी समय आने की सलाह हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान आते हैं, आपको कोई दांतों की परेशानी होती है, दर्द होता है किसी दांत में, और उस समय आप आते हैं और अगर आप मान लीजिए आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए एक्सरे लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो हम उस समय नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका बुरा असर गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर में पड़ता है। तो इसीलिए आप बच्चे के प्लानिंग के समय में ही डेंटिस्ट को दिखाइए ताकि गर्भधारण करने से पहले ही आपके मुंह के सारे बीमारी का सही निवारण किया जा सके। गर्भ के दौरान जो है बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आते हैं महिलाओं में जिसके वजह से आमतौर पर मसूड़े में सूजन आ जाता है। देखिएगा मसूड़े में खून आने की शिकायत हो जाती है, उसके लिए सफाई की आवश्यकता पड़ती है। बट कहा यह जाता है कि पहले 3 महीने में जब गर्भ जो है सही आकार ले रहा होता है तो उस दौरान किसी भी प्रकार का डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए, और उस दौरान अगर आपको दर्द भी है तो हम बहुत सारी दवा भी आपको नहीं दे सकते हैं।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अक्सर पायरिया से जो लोग ग्रसित होते हैं मुंह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, तो वो किस तरह की बीमारी है और उसमें किस किस तरह के लक्षण आमतौर पर दिखाई देते हैं, और पायरिया जब हो जाए तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, मैंने आपको बताया कि मुंह के सारे बीमारी का मेन कारण है मुंह का सही साफ सफाई नहीं रहना। अगर आपके मुंह में गंदगी रहती है, वो गंदगी आपके दांतों के आसपास में जमा होती है, उसके ऊपर में एक लेयर के जैसा जम जाता है जिसको कि हम लोग आमतौर के भाषा में प्लाक कहते हैं, उसी प्लाक में बहुत सारे विषाणु और रोगाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और उससे जो केमिकल सिक्रीट होता है उसकी वजह से हमारे मसूड़े में सूजन आ जाता है। अब अगर वो मसूड़े में सिर्फ सूजन रहे और अंदर के हड्डी को नहीं मान लीजिए अफेक्ट करे, तो उसको हम लोग जनरल बोलचाल की भाषा में जिंजिवाइटिस कहते हैं, मतलब आपका इन्फेक्शन मसूड़े तक ही सीमित है। और अगर आप उस दौरान आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो सही सफाई करने से जिसको कि स्केलिंग कहते हैं, स्केलिंग कराने से जो है वो गंदगी हट जाता है, और उसके बाद आप सही तरीके से घर पे अगर आप ब्रश करते हैं, सही तरीके से देखभाल करते हैं तो बीमारी वापस नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसी को नेग्लेक्ट करते हैं, लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं, तो वही जिंजिवाइटिस वाली बीमारी आगे जाकर के हड्डी में पकड़ लेती है और उसी को पायरिया या हम लोग डॉक्टरी भाषा में जिसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं उसमें तब्दील हो जाता है, जिसमें कि आपके मसूड़े से खून के अलावे मवाद आने लगता है, दांत हिलने लग जाता है, कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे वो कमजोर होकर के गिर जाता है।
0: दांतों से खून आने लगता है और कमजोर होकर के दांत गिरने भी लग जाते हैं। ये समस्या आमतौर पर मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनमें भी दिखाई पड़ती है, और भी किस तरह के लक्षण होते हैं और उससे किस तरह की देखभाल की जरूरत होती है?
1: मधुमेह के जो पेशेंट है उनको आमतौर पर अपने मुंह की देखभाल नॉर्मल लोगों से ज्यादा करनी चाहिए, उनका डेंटल कंसल्टेशन हर एक 6 महीने में होना चाहिए। जैसे वो शुगर की जांच नियमित रूप से कराते हैं उसी तरीके से दांतों की जांच करनी भी आवश्यक है, खास करके वैसे शुगर के पेशेंट में जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके शरीर के कई अंगों पर प्रभाव डालती है। मैंने आपको बताया कि दांत जो है हमारे जड़ के चारों तरफ हड्डी से वो मजबूती के साथ पकड़ा रहता है, तो अगर आपका शुगर का लेवल बहुत फ्लक्चुएट करेगा तो उसका बुरा प्रभाव उस हड्डी के ऊपर में पड़ता है, दांत के ऊपर में ज्यादा नहीं पड़ता है, और वो पकड़ जो है धीरे धीरे हड्डी गलने की वजह से कमजोर हो जाती है, और ऐसे लोगों में पायरिया की शिकायत ज्यादा देखी जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि आप डेंटिस्ट की सलाह ले ही लें, साथ में अपने शुगर को जो है कंट्रोल में रखें, नियमित जांच कराते रहें और अकॉर्डिंगली दवा खाते रहें।
0: टेढ़े मेढ़े जो दांत हो जाते हैं सर, वो किस कारण से होते हैं और उसे सीधा करने के लिए लोग दांतों में क्लिपिंग करवाते हैं, तो वो क्लिपिंग से कुछ दांतों में बुरा असर होता है?
1: हमारे पुराने जमाने में हमारे दादा दादी नाना नानी वो सजेस्ट करते थे हमेशा, देखिएगा कि खाने के लिए स्वस्थ खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल फूल खाइए, उससे हमारे दांत जो है मजबूत रहते हैं। जितना फल खाएंगे, जो थोड़ा कड़ा होता है वैसा फल खाएंगे, तो एक तरीके से हमारे दांतों का एक्सरसाइज होता है और वो हमारे दांतों की मजबूती को बरकरार रखता है। साथ में नियमित रूप से दूध का सेवन जरूर करें जो कैल्शियम का मेन सोर्स है। अगर कैल्शियम की कमी आपके शरीर में होगी तो उसका बुरा असर दांत जब बन रहा होता है उस दौरान दांतों के ऊपर में भी दिखता है, साथ ही में जो चारों तरफ उसकी जो हड्डी होती है उसके ऊपर में भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा दांत जो है वो कमजोर बनता है। जो आप उबड़ खाबड़ वाले दांतों के बारे में बोल रहे थे वो मेनली जो है जेनेटिक है, अनुवांशिक जिसको कहते हैं। अगर मदर फादर का दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वही सेम चीज आप देखिएगा बच्चों में भी होता है, उसका कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं। पुराने जमाने में लोग इतना ध्यान नहीं देते थे दांतों पे, वो उसको नेग्लेक्ट करके रखते थे, लेकिन आजकल के बच्चे ज्यादा कॉन्शियस हैं और वो इसको अपने पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं, तो इस वजह से आजकल दांत को सीधा कराने के लिए बहुत सारे पेशेंट उत्सुक रहते हैं, जिसको कि क्लिपिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर क्लिपिंग सही तरीके से उपचार हो तो उसका कोई दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर में नहीं होता है और वो दांतों को सही तरीके से अलाइन करने में हेल्प करता है।
0: कैविटी की आपने बात कही थी सर, तो कैविटी की वजह से कई बार दांत निकलवाना पड़ जाता है, तो निकलवाने के बाद बहुत सारी सावधानियों की जरूरत होती है, तो वो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, और फिर जो

0: कीड़ा लगा, तो वो शुरू में बहुत छोटा होगा। सही समय पे अगर आप डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो बिल्कुल शुरुआती समय में ही वो पकड़ में आ जाएगा। डेंटिस्ट नॉर्मली उस कीड़ा लगे भाग को काट के हटा देते हैं और उसकी जगह पे दांतों की भराई कर देते हैं सीमेंट जैसे पदार्थ से, और वो कीड़ा आगे नहीं बढ़ता है। अगर आप सही समय पे नहीं आते हैं डेंटिस्ट के पास तो धीरे धीरे अपने आप बड़ा होता जाएगा और एक समय आएगा जब वो अंदर की नस को पकड़ लेता है। उस दौरान आपको दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कीड़ा लगा हुआ जो कैविटी है वो बड़ा हो जाता है, तो दांतों की मजबूती पहले से कम हो जाती है, तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, आपकी मजबूती कम हो जाएगी जितना ज्यादा आप नेग्लेक्ट करेंगे। और वैसी स्थिति में दांतों में दो तरीके के इलाज की आवश्यकता पड़ती है, या तो आपको दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है या दांत निकलवाना पड़ जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाले स्टेज में अगर दांत है तो दांत में आरसीटी करके अंदर के इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है और उसके ऊपर में कैप देके दांत के मजबूती को बरकरार रखा जा सकता है और दांतों को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। अगर किसी कारणवश दांतों को बचाया ना जा सके तो दांत को निकलवा दिया जाता है और उसके जगह पे असली दांत के जैसा रिप्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जो कि हम लोग बोलचाल की भाषा में इम्प्लांट कहते हैं या दंत रोपण कहते हैं। तो अभी आजकल दंत रोपण की प्रक्रिया या इम्प्लांट की प्रक्रिया सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसका रीजन ये है कि वो दांतों को एकदम असली दांत के लगभग बराबर मजबूती से वो रिप्लेस कर सकता है या उसके जगह पे एक नया दांत दे सकता है। जब दांत निकलवाया जाता है तो निकलवाने से पहले कुछ टेस्ट कराने चाहिए, जैसे आप शुगर के पेशेंट तो नहीं है, हार्ट के पेशेंट तो नहीं है, अगर हैं तो वो चीज पहले से अपने डेंटिस्ट के जानकारी में दें, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव, देखिए हमारे दांतों का सीधा संबंध हमारे हार्ट से होता है। अगर दांत में इन्फेक्शन होगा और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो उस इन्फेक्शन को हार्ट तक पहुंचने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से अगर आप पहले से देंगे इस बात की जानकारी तो आपके डेंटिस्ट अकॉर्डिंगली जो है दवा चला करके उस इन्फेक्शन को कम करने की पहले से ही कोशिश करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे परिवार कल्याण पर आधारित कार्यक्रम घर संसार, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी। गैलेक्सी हाई स्कूल पबरा रोड हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, संकलन एवं वाचन है अनामिका और नाहमता परवीन के, प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक है विक्रम कुमार रंजन।

0: नमस्कार,
1: मैं हूँ अनामिका। प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकों और हमारे सभी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना प्यारा कार्यक्रम फुलवारी, जहां हर रविवार खिलती है मुस्कानों की कलियां, गूंजती है नन्हे कदमों की चहचहाहट और सीखने का सफर बन जाता है मजेदार।
2: और मैं हूं नहमता, आप सभी का स्वागत है। रविवार यानी छुट्टी का दिन, आराम का दिन और मस्ती के साथ कुछ नया सीखने का दिन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ पल होंगे हंसी, कहानी, गीत, ज्ञान और ढेर सारी खुशियों से भरे कार्यक्रम।
1: बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे एक बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल उसे सुंदर बनाते हैं, वैसे ही हम सबकी अलग अलग खूबियाँ इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। कोई अच्छा गाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई खेल में आगे है तो कोई पढ़ाई में। इसलिए हमेशा अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखिए और दूसरों की खूबियों की भी सराहना कीजिए।
2: बिल्कुल, याद रखिए, अच्छी आदतें ही हमें अच्छा इंसान बनाती है। सुबह समय पर उठना, बड़ों का सम्मान करना, साफ सफाई रखना, पौष्टिक भोजन करना, पेड़ पौधों से प्यार करना और रोज कुछ नया सीखना, यही छोटी छोटी बातें जीवन को बड़ा बनाती है।
1: तो दोस्तों, आज के इस अंक में आपके लिए होंगे प्यारे प्यारे गीत, मजेदार बातें, एक प्रेरणात्मक कहानी, कुछ रोचक जानकारी और अंत में एक छोटी सी सीख जिसे आप अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहेंगे।
2: तो देर किस बात की, मुस्कुराइए, परिवार के साथ बैठ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सफर की।
1: तो नहमता, मिलवाते हैं आज के मेहमान बच्चों से, वो है गैलेक्सी हाई स्कूल के बच्चे।
3: जय हिंद बच्चों।
4: जय हिंद।
3: तो कैसे हैं आप सभी बच्चे?
4: ठीक है।
1: और

0: प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं प्रार्थना।
1: जी,
0: आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम मंतशा आलिया है।
0: आप?
3: मेरा नाम आशफा जन्नत है।
4: मेरा नाम मोनिका कुमारी है।

0: राम प्रभु।
1: तो प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है नम्रता, अब पहुंचते हैं हम छोटे छोटे बच्चों के पास और सुनते हैं ये क्या सुना रहे हैं।
2: बिल्कुल, अपना नाम बताइए।
3: मैरिन सबा।
2: और आपका?
4: इल्मा रजा।
2: और क्या सुना रही है आप लोग, साथ में सुनाएंगे क्या? अलग अलग है ना, तो चलिए आप अपना नाम बताइए और क्या सुना रही है वो सुनाइए।
3: माय नेम इज मेहरिन सबा, रखे गाल पे हाथ सोचती प्यारी गुड़िया रानी, गर्मी बहुत सताती मुझको कब बरसेगा पानी, खूब नहाऊंगी बारिश में गरम पकौड़े खाऊंगी, कागज के नाव तला के नानी के घर जाऊंगी।
1: बारिश भी होगी, पकोड़े भी खाएंगे और
2: कागज की नाव पे नानी के घर जाएंगे भी। आपका नाम?
4: माय नेम इज इल्मा रजा, एक चिड़िया छोटी सी उड़ती है पंख पसार, आसमान में उड़ती जाती जाने कहाँ गुम हो जाती।
2: तो ये नन्हे मुन्हे बच्चों की राइम्स के बाद हम लोग चलते हैं शायरी, ये सुनाएंगे आप।
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नाम है मोहम्मद अरहान अली, क्लास 9 से हूँ मैं। आज जुम्मा का ये बाबरकत दिन रहमतों का पैगाम लाया है, और आप सब की पुरखुलूस महफिल ने इस लम्हे को और भी हसीन बनाया है। जो अहले ज़ौक मेरी सदा को तवज्जो से सुन रहे हैं, उन सब की खिदमत में दिल की गहराइयों से अदब अर्ज़ करता हूँ। इजाज़त दीजिए कि चंद आशार अर्ज़ करूँ, दुआ है कि मेरे अल्फाज आपके दिलों को छू जाएँ। हर अल्फाज में सच्चाई का उजाला नज़र आए, हर दिल को मोहब्बत का हवाला नज़र आए। ना रुतबे का गुरूर हो ना दौलत का नशा, इंसान वही है जिसमें इंसानियत नज़र आए। अंधेरों से कभी घबराना नहीं ए दोस्त, एक छोटा सा दिया भी रास्ता दिखा जाए। ज़िंदगी का असल हुस्न यही पैगाम देता है, जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। आखिर में बस इतनी सी दुआ है रब से, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर दिल में वफा हो, हर कदम पर कामयाबी हो और हर दुआ कबूल हो। धन्यवाद।
1: बहुत खूब शायरी के बाद अब कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं गाना।
2: नात था ना, चलो अपना नाम बताओ।
3: इल्तिफात बारी, जारिया खातून।
2: चलिए स्टार्ट कीजिए।

0: आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है निदा हाशमी।
0: और ये सुना रही है केबल टीवी के फायदे और नुकसान के बारे में, तो वो सुनते हैं।
1: केबल टीवी जब से आया सबके मन में बहुत भाया, मनोरंजन का साधन लाया। केबल टीवी जब से आया, केबल टीवी जब से आया, घर का काम न हमको भाए, हमने केबल टीवी लगवाया। रिपोर्ट कार्ड जब मेरा आए, नंबर उसमें एक न आए। पापा ने डाटा धमकाया और केबल का तार कटवाया। मेरी जब समझ में कुछ आया, तब पढ़ने का वक्त मैंने व्यर्थ गवाया। धन्यवाद।
2: केबल टीवी के फायदे और नुकसान के बारे में हम लोगों ने सुना, उसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चे फिर से रैंस लेकर खड़े हैं।
0: बिल्कुल, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, सुनते हैं इनसे। आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम जैनब नाज़मी है।
0: सुनाइए।
3: देख पेड़ पे लटके आम, भूल जाता हूँ सारे काम। फेंकता हूँ मैं अपना बस्ता, छोड़ता हूँ मैं स्कूल का रास्ता। खींच के मारा पत्थर एक, गिर गए वहाँ आम अनेक। माली ज्यों ही जागा, मैं आम उठा के भागा। माय नेम इज जेंस कुमार ओझा।
2: और क्या सुना रहे हैं?
3: गधा बहुत था सीधा बोला।
2: चलिए सुनाइए।
3: गधा बहुत था सीधा बोला, उससे हंस के कुत्ता बोला, मामा को एक गीत सुना दो, कोई मीठा गाना गा दो। फुला ही गधा बड़ाई गंगर, खड़ा हुआ सीधा गंगर। धाचू धाचू धाचू जब चिल्लाया, धोबी ने डंडा बरसाई। थैंक यू। मायने में साफी अंजुम। बंदर मामा बने ज्योतिषी, मोटी पुस्तक खोले, करने लगे भविष्यवाणियां, जंगल में यू बोले। नए साल पर चंपक भालू हो जाएगा गंजा, नन्ना सा खरगोश शेर से जमकर लड़ाएगा पंजा। थैंक यू।
2: अब ये तीनों बच्चे साथ में सुनाएंगे अनामिका, तो एक एक करके पहले नाम बताइए।
4: मेरा नाम अलीना परवीन है।
5: मेरा नाम जायरा खान है।
6: मेरा नाम आशा फातिमा है।
2: और आप लोग क्या सुना रहे हैं? चलिए स्टार्ट कीजिए।
7: रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट, व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। येलो लाइट, व्हाट डू यू से? आई से वेट, वेट, वेट। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से? आई से गो, गो, गो। थैंक यू।
0: और अब छोटे बच्चों के राइम्स के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची गाना सुनाने वाली है।
8: मेरा नाम सुबाया नाज है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ।

0: धन्यवाद।
1: और अब नाम था देशभक्ति गीत के बाद आगे बढ़ते हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या सुना रही हैं?
0: मेरा नाम मोनिका कुमारी है। मैं आप लोगों के सामने एक विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, कोई दुख मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। धन्यवाद।
2: मेरा नाम जुनैद शादिक है। मैं आपके समक्ष में एक सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक सुंदर वस्त्र आपकी दशा बदल सकता है, लेकिन एक सुंदर व्यवहार आपकी जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।
1: और अब सुविचार के बाद बारी है पहेली बूझने की।
3: बिल्कुल, तो आप लोग पहेली बूझने के लिए रेडी है ना?
4: Yes,
1: आप अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम शफहत खुर्शीद है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ।
1: चलिए आप पहेली पूछिए, ये बूझते हैं।
5: मेरी पहेली ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? बताओ बताओ क्या है?
3: तो एकदम बिल्कुल सही बता दी।
1: सही जवाब।
5: पहली नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज है जिसका हाथ है लेकिन ताली नहीं बजा पाती? बताओ बताओ इसका आंसर।
4: घड़ी।

0: पहेली नंबर तीन, ऐसी कौन सी चीज है जिसका गर्दन है लेकिन सर नहीं, बताओ बताओ।
1: मालूम है? नहीं मालूम, आप ही बताइए भाई।
0: का आंसर है बोतल।
1: पता चला? हाँ।
0: ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम इस्तेमाल करने से पहले तोड़ते हैं?
1: बताइए बताइए, कौन सी चीज है जिसे इस्तेमाल करने से पहले तोड़ते हैं? वाह,
2: बिल्कुल सही जवाब।
3: ठोठा भाषा किसको किसको समझ में आता है? देहाती भाषा आता है ना समझ में? तो चलिए पहली मेरी तरफ से है। तनी मोटू गाजो मिया, ठीक है, तनी मोटू गाजो मिया, लंबे को पूछ, चले लगल गाजो मिया, हिले लगल पूछ। नहीं नहीं नहीं,
1: ये तो भाई मुझे भी नहीं पता।
3: बताइए बताइए।
1: गाजर?
3: गाजर नहीं, उसका लंबा पूछ कहाँ होता है? नहीं नहीं,
1: अगर ये दीदी ही बताएंगी इसका जवाब।
3: बता दे। सुई और धागा।
1: समझ में आ गया?
3: समझ में आ गया ना?
1: ताली बजाइए।
4: और अब नहमता पहेली के बाद बारी है गजल सुनने की। आप अपना नाम बताइए।
5: सुबह बखैर, मेरा नाम मंतशा आलिया है और मैं आज आप सभी के सामने पेश करने जा रही हूँ ये खूबसूरत गजल। फकत बातों से दुनिया में कभी इनकलाब नहीं आता, फकत बातों से दुनिया में कभी इनकलाब नहीं आता, बिना जागे हुए आँखों में कोई ख्वाब नहीं आता। समंदर को अगर तस्खीर करना है तो बढ़ आगे, समंदर को अगर तस्खीर करना है तो बढ़ आगे, किनारे पर कभी तूफान का सैलाब नहीं आता। अंधेरी रात जितनी भी हो सूरज तो निकलता है, अंधेरी रात जितनी भी हो सूरज तो निकलता है, शहर के सामने कोई भी अब हिजाब नहीं आता। मिट्टी मांगती है खून पसीना और बेदारी, मिट्टी मांगती है खून पसीना और बेदारी, बिना मेहनत के चेहरे पर कोई शबाब नहीं आता। शुक्रिया।
1: आप क्या सुनाने जा रहे हैं?
6: मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ।
1: नाम बताइए अपना।
6: शशांक राज।
1: चलिए सुनाइए।
6: आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उसलु विजय का पर ठिठकता देख करिया, रात का राजा खड़ा है राम में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। धन्यवाद।
4: ये हरिवंश राय बच्चन की कविता थी ना। और अब नहमता एक और नाद सुनते हैं। आप अपना नाम बताइए।
7: मेरा नाम है अर्श रजा।
4: सुनाइए।
7: मेरे

0: करते।
1: शुक्रिया।
2: आप अपना नाम बताइए।
3: MD RT।
2: और क्या सुना रहे हैं?
3: हिंदी पोयम
2: सुनाइए।
3: बंदर मामा बने छोटी सी मोटी पुस्तक खोने, करने लगे भाभी सानिया, नए शाम पे चप्पल फाड़ू हो जाएगा कंज, नन्ना सा खको से जम कर नराएगा पंजा। धन्यवाद।
2: तो अनामिका, ये तो समझ में नहीं आया, एकदम तोतली सी प्यारी सी आवाज में इन्होंने सुनाया। उसके बाद अब चलते हैं आगे, बच्चे क्या सुनाते हैं।
4: आप दोनों नाम बताइए।
5: मेरा नाम है जायरा निशा।
6: मेरा नाम है महक परवीन।
2: चलिए सुनाइए।

0: सीखे, सूरज जैसा चमकना चाहते सूरज जैसा जलना सीखे।
1: तो सूरज जैसा अगर चमकना चाहते हैं तो सूरज जैसा जलना भी सीखना होगा पहले, क्यों? तो अब आप लोग हंसने के लिए रेडी है, क्योंकि अब बारी है चुटकुला सुनने की। आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम शादाब है।
1: और चुटकुला सुना रहे हैं, सुनाइए।
2: एक शराबी छत से नीचे गिर गया, सब लोग आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। शराबी, पता नहीं भाई, मैं अभी जस्ट अभी अभी नीचे आया हूँ।
1: लगता है इस चुटकुले में ज्यादा हंसी नहीं आई आप लोगों को ना।
3: सुनते हैं दूसरा चुटकुला।
2: अध्यापक ने गधे के सामने एक बोतल दारू और एक बाल्टी पानी की रखी। गधा सारा पानी पी गया। अध्यापक ने बच्चों से पूछा, तो तुमने क्या सीखा? बच्चे, जो दारू नहीं पीता वो गधा है।
1: आप अपना नाम बताइए।
4: सुप्रभात, मेरा नाम अफशीन अहमदी है। आज मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ। हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भरी है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदे से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनकी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती समाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निर ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।
1: धन्यवाद। और अब ना हम तब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इनसे सुनते हैं क्या सुना रही है। आप अपना पहले नाम बताइए।
5: मेरा नाम अश्फा जन्नत है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक खूबसूरत शायरी पेश करने जा रही हूँ। गौर फरमाइएगा। न रुकना है तुझे न थकना है तुझे, न रुकना है तुझे न थकना है तुझे, अपनी किस्मत का सूरज खुद बनाना है तुझे। ये रातें जो कट रही हैं किताबों के दरमियाँ, इन्हीं रातों के दम पर इतिहास रचना है तुझे। तेरी खामोश मेहनत ही कल शोर मचाएंगी, तेरी खामोश मेहनत ही कल शोर मचाएंगी, ये दुनिया तब तेरे कदमों में झुक जाएगी। माना कि राहों में कांटे और अंधेरे बहुत है, माना कि राहों में कांटे और अंधेरे बहुत है, पर याद रख सूरज के उगने के ही घेरे बहुत है। तू गिर कर संभलने का हुनर सीख ले ऐ मुसाफिर, मंजिल को पाने के लिए तेरे इरादे ही बहुत है, मंजिल को पाने के लिए तेरे इरादे ही बहुत है। उठ और ज़माने को अपनी ज़िद दिखा दे, उठ और ज़माने को अपनी ज़िद दिखा दे, खुद को झोंक दे आग में और अपनी हस्ती दिखा दे। पसीने की हर बूंद को मोती की तरह चमकाना है, पसीने की हर बूंद को मोती की तरह चमकाना है, तुझे सिर्फ जीतना नहीं जीत का परचम लहराना है। तू लिख अपनी कहानी अपनी मेहनत की खून से, क्योंकि कामयाबी उसी को मिलती है, क्योंकि कामयाबी उसी को मिलती है जो लड़ते हैं जुनून से। धन्यवाद।
1: तो बच्चों, आप लोगों ने इस शायरी से क्या सीखा? ये एक मोटिवेशनल शायरी थी, तो आप लोगों ने क्या सीखा?
6: हमें कभी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया। क्या आप सुनाने जा रही हैं?
7: तेरी मिट्टी में मिल जावा सॉन्ग।
1: अपना नाम बताइए।
7: मेरा नाम अफशनाज है।
1: चलिए स्टार्ट कीजिए।

0: धन्यवाद।
1: बहुत खूब अनामिका।
2: कुछ बच्चे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो इनसे भी सुनते हैं क्या सुना रहे हैं। आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम सादिया है, मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ।
1: क्या सुना रही है?
3: कविता। टिंकू से यह बोला पेड़, टिंकू मुझको अधिक न छेड़, शायद तुझ पर काम नहीं पर मुझको आराम नहीं, देखो अभी डब में जाना है, बादल से पानी लाना है, जीवों को वायु देनी है, मिट्टी को आयु देनी है, अभी बनाना ऐसा डेरा, पक्षी जिसमें करे बसेरा, इंसानों के रोग हारूंगा और बहुत से काम करूंगा, टिंकू कर मत पीछा मेरा, मैं धरती का पुत का मेरा। धन्यवाद।
2: पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है, सुना आप लोगों ने?
4: चुटकुला।
1: चुटकुला है? अरे वाह, एक और चुटकुला है अनामिका, तो चलिए। हाँ, आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम है अरहान सशीद।
1: और क्या चुटकुला है, सुनाइए।
4: चिंटू, पता है मुझे फल इतना पसंद है कि मैं उसे बिना छिले हुए खा जाता हूँ। पिंटू, लो। अच्छा, तुम्हें फल इतना पसंद है कि तुम उसे बिना छिले हुए खा जाते हो। लो नारियल लो और अनानास लो, इसे बिना छिले हुए खा जाओ।
3: धन्यवाद।
1: समझ में आया? तो फल इतना पसंद है कि बिना छिले खा जाता है, तो फिर नारियल और अनानास भी बिना छिले खाओ। हिंदी पोएम। तो अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम अफान शेख है।
1: और क्या पोएम है, सुनाइए।
5: एक एक पेड़ लगाओ तो बाग बना दोगे, एक एक ईंट लगाओ तो महल बना दोगे, एक एक रुपए कमाओ तो धनपति बन जाओगे। धन्यवाद।
1: छोटी सी कविता थी अनामिका, लेकिन पते की बात है।
2: बिल्कुल, 3 लाइन की कविता काफी कुछ कह गई।
1: आप अपना नाम बताइए।
6: मेरा नाम मंतशा परवीन है।
7: मेरा नाम अफशीन अक्रम है।
1: तो चलिए सुनाइए।
8: सुनो सुनो ओ चीटी रानी, इतना अधिक न काम करो, बैठो कुछ क्षण तुम छाया में और जरा आराम करो।
9: जीवन एक पहेली है, उसे सुलझाइए। जीवन में अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, सभी अच्छे काम करने चाहिए।
1: अनामिका, इस खूबसूरत से नात के बाद अब हम लोग प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
2: हाँ, तो बच्चों से इजाज़त ले लें अब।
1: जी बिल्कुल।
2: जय हिंद बच्चों।
10: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
11: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने

0: दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।

0: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए।

0: दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमरीका के साथ समझौता निलंबित किया, खामने ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड की इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट कन्वीन्स ऑल पार्टी मीटिंग टुडे अहेड ऑफ मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिनिंग टुमारो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वॉर्न्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अगेंस्ट सबमिटिंग फेक और एआई जनरेटेड OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Sri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both Houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency reveals that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
3: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificially intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores a growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. मणिक शर्मा आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।

0: a presence there. And finally, under the headline, final face-off, the Sunday Tribune carries pictures of Argentina's Messi and Spain's Yamal as the two nations vie for the World Football Crown tonight. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Saira. And now before we end, bulletin the headlines once again. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Sri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third-place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से मांगेगी सहयोग। साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन मामले में लोकायुक्त ने दर्ज शिकायत पर लिया संज्ञान। जिला खनन पदाधिकारी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। राज्य सरकार अगले वर्ष तक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हृदय रोग के इलाज की स्थायी सुविधा झारखंड में ही कराएगी उपलब्ध। झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय, अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना। धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालक और अंडर 17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन के मामले में लोकायुक्त ने दर्ज शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला खनन पदाधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। लोकायुक्त ने आदेश दिया है कि जिला खनन पदाधिकारी आगामी अगस्त में होने वाली सुनवाई के दौरान अब तक की गई कार्रवाई और अवैध खनन की विस्तृत जांच रिपोर्ट अपने साथ प्रस्तुत करें। राज्य सरकार बच्चों के हृदय रोग से जुड़े इलाज की स्थायी सुविधा झारखंड में ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कल बोकारो में आयोजित हार्ट डिजीज कैंप में बताया कि झारखंड में फिलहाल 18 साल से कम उम्र के बच्चों का हृदय रोग के इलाज की सुविधा नहीं है। सरकार की कोशिश है कि अगले साल तक झारखंड में भी इसके इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
3: में तो एकदम अबोध बच्चा जो जन्म से ही एक बीमारी लेके आता है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। और बिल्कुल, जैसे ये तो दिल की बीमारी है ही, और ये दिल को छू लेने वाली बात है कि अगर इस तरह के बच्चों का इलाज हो पाता है तो हम लोग इसको बहुत सफल मानते हैं। और फिर हम कोशिश करेंगे कि झारखंड में भी या तो देवघर एम्स में या रांची के सदर अस्पताल या रिम्स, ये व्यवस्था परमानेंट हो।
2: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के मोहुल डंगाल की मृतक रीना देवी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद की। इस दौरान परिवार के लोगों ने मंत्री को अस्पताल में रिश्वत मांगे जाने की जानकारी दी। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सदर अस्पताल पहुंचे और वहां घटना की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला प्रशासन को घटना के आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।
4: अभी हम लोग चंदा करके रूप में 50,000 रुपए दिए हैं। उनके जो परिवार के लड़का है तो हमने कहा कि हम सदर हॉस्पिटल में तुमको हम रखवा देते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ताकि तुम, उनके तीन तीन बच्चे हैं, एक बच्चा बेंगलुरु में था, इसको हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे भी हम लोग, और एक बच्चा है जो भी हम नामांकन कराएंगे। तो परिवार की जवाबदेही तो मेरी है।

0: जिला प्रशासन की मांग करूंगा कि आप खोच निकालिए, उसको कार्रवाई कीजिए।
1: रांची जिले के बुढ़मू के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा के खिलाफ रैयतों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। रैयतों ने आरोप लगाया है कि जमीन से जुड़े काम के बदले उनसे रिश्वत की गई थी। इस मामले में गिरफ्तार बुढ़मू सीओ सच्चिदानंद कुमार वर्मा, राजस्व उप निरीक्षक राजेश किशोर रवि और उसके भाई गौतम किशोर रवि की डिमांड अवधि पूरी हो चुकी है। सीबीएसई ने कक्षा दसवीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा दसवीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। सीबीएसई के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एट AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एट AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जेएसएससी की झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा आज रांची जिले के 127 केंद्रों पर आयोजित होगी। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने BNSS की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। धनबाद में अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स DMTF ने कार्रवाई कर धनबाद के एना कोलियरी और कतरास कोलियरी क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान में 40 वाहनों को जब्त किया। इस मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
2: एना कोलियरी और कतरास कोलियरी में हम लोग के द्वारा जांच किया गया संयुक्त रूप से, और उसमें कुछ मोटर व्हीकल के अंतर्गत वायलेशन पाया गया और माइनिंग के द्वारा भी कुछ चालान में विसंगति पाई गई, जिसके आरोप में लगभग 40 गाड़ियों को सीज करके थाना को सुपुर्द किया गया है और वाहन स्वामी से कागजात की मांग की गई है वाहन की, और कागजात प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
1: सिमडेगा के व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सन्हा ने कहा कि लोग अपने वाहनों का बीमा अवश्य कराएं, इससे वाहन मालिक परेशानी से बचेंगे, वहीं दुर्घटना पीड़ितों को न्याय भी मिल सकेगा।
3: हमारा स्कीम्स है DLSA का, वो जन जन तक पहुंच पाए, और इस संबंध में मैंने आज मोटर व्हीकल एक्ट पर अपनी बातें रखी और खासकर इस बात पर जोर दिया बिना इंश्योरेंस के कोई गाड़ी नहीं चले, इसके लिए मैंने TTO साहब को भी निर्देशित किया है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि पूरे राज्य जिले में एक भी गाड़ी ऐसी न हो जो कि इंश्योरेंस के बिना चले।
1: मौसम विभाग ने राज्य में अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार रांची में आज मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 20 जुलाई के लिए विभाग ने कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत रांची के खेलगांव, BIT मेसरा और जैपवन मैदान में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालक और अंडर 17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर अगले चरण में जगह बनाई। राज्य परियोजना पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने कहा कि सुब्रतो कप जैसी प्रतियोगिताएं स्कूली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतरीन मंच प्रदान करती हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने फीफा विश्व कप के आज होने वाले फाइनल मुकाबले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा

दैनिक भास्कर ने लिखा है रांची में 26 जुलाई से फुटबॉल का रोमांच, दर्शकों की फ्री एंट्री पर टिकट लेना होगा। हिंदुस्तान ने कोयले की गैस से दम घुटने से मां बेटे की मौत की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है निवेश आकर्षित करने में झारखंड इमर्जिंग श्रेणी में, प्राकृतिक संसाधन राज्य की ताकत पर कारोबारी माहौल बनाना चुनौती। दैनिक जागरण ने आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से मांगेगी सहयोग। साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन मामले में लोकायुक्त ने दर्ज शिकायत पर लिया संज्ञान, जिला खनन पदाधिकारी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। राज्य सरकार अगले वर्ष तक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हृदय रोग के इलाज की स्थायी सुविधा झारखंड में ही कराएगी उपलब्ध। झारखंड में मौसम हुआ सक्रिय, अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालक और अंडर 17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेशे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

0: कसम तेरी कसम, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। और अब आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: इश्क विश्क, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज में।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए हर्षित सक्सेना और भूमि त्रिवेदी की आवाजों में सब कुशल मंगल फिल्म का गाना। समीर अनजान है गीतकार और संगीतकार हैं हर्षित सक्सेना।

दोस्तों, आज है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित न रखकर किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों तथा समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचाना था। राष्ट्रीयकरण से पहले अधिकांश बैंक निजी स्वामित्व में थे और ऋण सुविधा मुख्यतः बड़े उद्योगों एवं संपन्न लोगों को ही प्राप्त होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बहुत कम थी, जिससे किसानों और छोटे उद्यमियों को साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद देश भर में बैंक शाखाओं का तीव्र विस्तार हुआ तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप कृषि, लघु उद्योग, स्वरोजगार और गरीब वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध होने लगा। महिलाओं, विद्यार्थियों तथा स्वयं सहायता समूहों को भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सहायता मिली। अपने आप में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाजों में राबता फिल्म का गाना सुनवा रहा हूँ। कुमार के हैं बोल और सोहराबुद्दीन की तर्ज़।

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही है जया सिन्हा।
2: नमस्कार। कभी एले पैदे की मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमैद्स मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमी किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
2: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो अब असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री, थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है?
3: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूं और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सेलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहां तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूं, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूं मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।
2: माधवन की एक खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
3: जी हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबी नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधरी ले लीजिए जहाँ पे अजित दोवाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता कि अजित दोवाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
2: ये माधवन की खासियत है ना, हर किरदार में
3: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर

0: करते तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा, अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे। तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
1: और आपने एक्सेप्ट किया, ये भी
0: वही कह रहा हूँ, जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस, बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना।
1: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
0: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे, उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं, तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे, जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे। इट इज अ फैबुलस मूव, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है।
1: आप एफसीआई से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देखा?
0: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था, जो वो देश की खासियत थी, वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है, या उनके पास ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए, वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए, मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है, एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
1: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी, द नाइट इफेक्ट, कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना, और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग भी थी, साथ में आपने फिल्म बनाई लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
0: बहुत अच्छा सवाल। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नंबे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, ना अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है, वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था, मैंने ना आए देखा या बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है, और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया उस सेट पे, जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ ना ही एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं, बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो, कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए, मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करता था, फिर मैं नतीजा के बारे में सोचता था।
1: आपने बात की सॉफ्ट पावर की, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया

0: के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह से कितने युवाओं पर इसका इफेक्ट?
1: नम्बी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहां पे वो पहले से ही रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया जिसकी वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अलाउड नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कॉम्पिटिशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है। इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरे दुनिया पे। फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो, जो समुंदर को अपने काबू में कर ले, वो दुनिया पे राज करेगा। फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते। इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नम्बी नारायणन और द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
0: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, यू नो, कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं? एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है, तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है और कैसे आता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड है। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूं, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
0: मैं इतना तो मैं विश्वास नहीं करती 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
1: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पर जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें यह तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी के एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि ये वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आए, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव।
0: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
1: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, उसके बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया 3 इडियट्स, तनुवर्ड्स, मनु, तो वो एक प्रोग्रेशन ही था। मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ड्स मनु, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग है। विक्रम वेदा ले लीजिए, फिर साला खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे हैं एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे 2 में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
0: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
1: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर। ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं।
0: क्राफ्ट
1: नहीं, सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को, पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते, एक ही फिल्म बनाना चाहते, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरेंद्र हो जाए, चाहे वो रणदी बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है। कोई अपनी और अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नीयत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकंपेरेबल। हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो वो दर्द दूर हो जाता है।
0: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक लकी भी रहे या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला। कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
1: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें, अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम, और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली, अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, ये मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा, जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेस करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन पर प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
0: रिपीटिशन दोहराव से डर लगता है?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रेपिटेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस। तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहां पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट, टू पुट मी डाउन इन द सीन, टू मेक श्योर दैट द फिल्म वर्क्स। तो मैं इसी नियत के साथ सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए।
0: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले गया, ये तो या मेरे में रह गया, ये मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा?
1: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरेंद्र, एक हॉर फिल्म अभी कर ही रहा हूं जो रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जीडी नायडू, वो हमारी इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है। तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ ना कुछ मुझ में छोड़ जाते हैं।
0: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज?
1: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती। जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल। It was that very good. इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है, एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे। धुरंधर was exactly that. और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों के बाद थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ, उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कि एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए, ये हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में, बाकी के देशों में। सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा।
0: रियल लाइफ हीरोज की आप बात कर रहे हैं, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है, किस तरह से देखते हैं?
1: ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है। और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकालकर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं। पर ये जो पद्मा की जो है फिलॉसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है, और मुझे बड़ा गर्व है कि इस सोच के साथ पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है आज के दिन।
0: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
1: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पे हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता, तो उस चीज को

0: विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा। ये प्रसारण डीडी न्यूज के सहयोग से किया गया।
2: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
3: राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: श्रोताओं नमस्कार।
1: आप यहां
0: हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं।
1: तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग, बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: छुड़ाओ में धागा।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे आज के फनकार हैं अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन में रस घोलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
0: ओ नीरज नैना आजरा आजरा।
1: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम उनके उपनाम नीरज से पहचानते हैं। वही नीरज जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

0: उम्र की नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहाँ कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनकी फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते। उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपनी फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल सभी गीत सुपरहिट रहे, खास तौर से ये गीत।
1: स्वप्न झरे फूल से

फिल्मी दुनिया की चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं, मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।

नीरज का रुझान लेखन की ओर तो था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट

62 रुपए महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।

दिल्ली पहुंचे नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुंचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुंचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूँ, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए।

के जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका गीत देखकर सचिन देव बर्मन की आंखों में चमक आ गई थी। गीत ही कुछ ऐसा था।

0: मेरे सपने। इस फिल्म में देव आनंद और मुमताज पर फिल्माया ये गीत नीरज की कलम से निकले अमर गीतों में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देव आनंद ने भी नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी। और जब नीरज को पता चला कि देव आनंद फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देव आनंद को भेज दिया।
1: फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती।
0: नीरज की भाव भरी पाती देव आनंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देव आनंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा

लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द न आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देवानंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें, फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देवानंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द

बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित की। नीरज ने छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दिया था।

0: कवरेज ने फिल्मी गीतों से ज्यादा कविताओं, दोहे आदि रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है। वो जीवन के अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे। उन्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने नहीं घेरा और इस बारे में पूछने पर उनका कहना था कि वो उचित मात्रा में भोजन करते हैं और अपनी कलम के माध्यम से अपने मन के उद्गार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे मन भी हल्का रहता है। नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने भी आते। वो लोगों की सहायता करने में आगे रहते और मानवता की बातें अपने गीतों के जरिए भी पहुँचाते।
1: मैं बस

नीरज ने अपने फिल्मी करियर में सचिन देव बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा। इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें जिसे नकारना असंभव हो। नीरज रातों रात एक ऐसा गीत लिखकर लाए जिसे देखकर शंकर जयकिशन झूम उठे। इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। निर्माता राजेंद्र भाटिया ने खुश होकर नीरज को अपनी कार ही गिफ्ट कर दी। ये फिल्म थी कन्यादान और वो गीत था ये।

नीरज ने तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र ना करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपनी कलम से कहते हैं जिसकी हूक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।

0: और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जोकर के दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

धीरज ने श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी। मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

भाव कोई भी हों, लेकिन नीरज के गीतों की खासियत थी उनकी सरल भाषा। वो जटिल से जटिल बात भी आम जन को समझाने वाली भाषा अपने पास रखते थे।

नीरज एक अनोखे इंसान रहे, जहां एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिलने के बाद कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ही नीरज वापस लौट गए। कारण था लोगों का बदलता व्यवहार। उन्हें ये एहसास हुआ कि अब इंडस्ट्री में वो लोग नहीं हैं जिन्हें शब्दों का वास्तविक सम्मान है। उन्हें लगातार कला में पूंजीवाद का समावेश पसंद नहीं आ रहा था।

हालांकि वो अपने चाहने वालों से जुड़े रहे और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करते रहे। देवानंद से भी उनका खासा प्रेम बना रहा और उनकी आखिरी फिल्म चार्ज शीट में भी नीरज ने ही गीत लिखे।

उनका इस तरह से फिल्मी दुनिया से लौटना भी शायद उनके ही इस विचार का आईना है, जहां वो लिखते हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा।

0: न तन ले के लौटा न मन ले के लौटा।
1: नीरज को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नीरज ने संसार को विदा कहा और अपने पीछे अपनी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए। उनके गीतों, कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वो आज भी चाहने वालों के बीच अमर हैं।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था कलम के जादूगर, लेखक, कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
2: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेसब्री से अपने इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद चलिए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बैंक राष्ट्रीयकरण 1969 से आज तक की विकास यात्रा के बारे में। दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस ऐतिहासिक कदम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, कृषि एवं लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना और देश के आर्थिक विकास को समाजवादी लक्ष्यों के साथ जोड़ना था। इस यात्रा में कई चरण हैं, आइए जानते हैं। पहला चरण है 1969 राष्ट्रीयकरण की नींव। 19 जुलाई 1969 को उन सभी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिसकी जमा पूंजी ₹50 करोड़ से अधिक थी। इससे देश के लगभग 80% बैंकिंग क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा चरण था 1980 से विस्तार तक। पहले चरण की सफलता के बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और निजी बैंकों जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1991 के आर्थिक सुधार, वैश्वीकरण और उदारीकरण। आर्थिक संकट के कारण

नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में वित्त सुधार किए। एम नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में निजी और विदेशी बैंकों के प्रवेश की अनुमति दी गई। इससे सरकारी बैंकों में तकनीकी सुधार और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। 2000 का दशक डिजिटलीकरण की शुरुआत। बैंकिंग प्रणाली अधिक आधुनिक हुई और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की मदद से सभी शाखाएं आपस में जुड़ी। आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवाओं ने लेन देन को त्वरित बना दिया। 2014 से 2016 वित्तीय समावेशन आम जनता को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत करोड़ों नए बैंक खाते खोले गए और डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचने लगा। 2019 से 2021 बैंकिंग समेकन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मेगा विलय मर्जर की नीति अपनाई। कई छोटे बैंकों को बड़े बैंकों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक आदि में मिला दिया गया। इससे सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई। आइए जानते हैं आज की स्थिति। 2026 डिजिटल क्रांति। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और डिजिटल लेंडिंग के जरिए वैश्विक स्तर पर सबसे उन्नत प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं। आज ग्रामीण भारत से लेकर महानगरों तक वित्तीय समावेश का दायरा ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जो 1969 के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति का प्रमाण है।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद चलिए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुजुर्गों का हमारे परिवार में क्या भूमिका है, उनका क्या स्थान है और उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव और हमारी संस्कृति के जीवंत प्रतीक होते हैं। वे न केवल हमें अपना अमूल्य अनुभव और मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि कठिन समय में परिवार को एकजुट भी रखते हैं। परिवार में बुजुर्गों की भूमिका और उनके प्रति हमारा सम्मान इन सभी बातों से स्पष्ट होता है। अनुभव और मार्गदर्शन जीवन की लंबी यात्रा के अनुभव के आधार पर वे परिवार को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं और संकट के समय एक मजबूत ढाल बनते हैं। संस्कारों के संवाहक होते हैं वे। बच्चों को हमारी संस्कृति, नैतिक मूल्यों और पारिवारिक परंपराओं से जोड़कर रखते हैं। साथ ही साथ भावनात्मक सहारा भी देते हैं। वे घर में शांति और स्थिरता का प्रतीक होते हैं। उनकी उपस्थिति से घर में एक सुरक्षा और अपनापन महसूस होता है। बच्चों की देखभाल। माता पिता की अनुपस्थिति में या व्यस्त दिनचर्या में

वे बच्चों को संस्कार, प्यार और सही परवरिश देने में अहम योगदान निभाते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान और अपना कर्तव्य कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। बुजुर्गों को अक्सर अकेलेपन का एहसास होता है। उनके साथ नियमित समय बिताना, उनकी बातें और पुरानी यादें सुनना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी राय अवश्य लेनी चाहिए ताकि वे खुद को परिवार का एक अभिन्न अंग महसूस करें। उनकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना, समय पर दवाइयां देना और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। उम्र के साथ कई बार उनके स्वभाव में बदलाव आता है। ऐसे में उनके प्रति धैर्य और प्रेम बनाए रखना चाहिए। उनके जीवन भर के योगदान के लिए उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए।

दोस्तों ये जानते हैं आज का इतिहास। 19 जुलाई को इतिहास में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज हैं। भारत के लिए यह दिन विशेष रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण और मंगल पांडे के जन्म से जुड़ा है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले मानव मिशन का गवाह बना। भारत और विश्व इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। भारत के इतिहास में 19 जुलाई 1969 भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना था। 19 जुलाई 1948 पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए परमिट प्रणाली लागू की गई। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत व नायक मंगल पांडे का जन्म हुआ था। आज के दिन यानी 19 जुलाई 2006 भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस जो कराची से जोधपुर के बीच चलती है का पुनः संचालन शुरू हुआ। आइए जानते हैं विश्व इतिहास में आज का दिन। 19 जुलाई 1969 अमेरिका का ऐतिहासिक अंतरिक्ष यान अपोलो 11 पहली बार चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा। 19 जुलाई 1870 फ्रांस और प्रशा के बीच प्रसिद्ध फ्रांको प्रशियन युद्ध की शुरुआत हुई। 1900 यूरोप की सबसे व्यस्त और बड़ी प्रणालियों में से एक पेरिस मेट्रो की पहली लाइन की शुरुआत की गई। 1848 न्यूयॉर्क के सेनेका पॉल्स में महिलाओं के अधिकारों को समर्पित अमेरिका का पहला महिला अधिकार सम्मेलन शुरू हुआ।

दोस्तों 19 जुलाई को कई प्रसिद्ध भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों का जन्म हुआ। आइए जानते हैं प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों के बारे में। मंगल पांडे, जो कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी और सिपाही थे, जिन्होंने स्वतंत्रता की पहली चिंगारी भड़काई। दूसरे हैं सुदर्शन पटनायक, भारत के एक विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट हैं, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अन्य प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों में हैं सैमुअल कोल्ट, जो कि अमेरिकी आविष्कारक और उद्योगपति हैं, जिन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया। दूसरा है हेनरिक इवसेन, नॉर्वे के प्रसिद्ध नाटककार और कवि, जिन्हें आधुनिक यथार्थवादी नाटकों का जनक कहा जाता है। तीसरा है एडगर दोगास, फ्रांस के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार। 19 जुलाई को दुनिया भर में कई प्रसिद्ध हस्तियों का निधन हुआ। इनमें है एनी मस्केरिनी, 1963 भारत की संविधान सभा की सदस्य और त्रावणकोर कोचिन केरल की पहली महिला मंत्री थी। एलेन नेवल, 1992 प्रसिद्ध अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी। पाओलो बोर्सेलिन, 19 जुलाई 1992 इटली के प्रसिद्ध माफिया विरोधी न्यायाधीश। जेम्स गार्डनर, 2014 लोकप्रिय अमेरिकी अभिनेता। और अंत में हेलेन थॉमस, 19 जुलाई 2013 अमेरिकी पत्रकार और व्हाइट हाउस की दिग्गज संवाददाता।

और अब आइए जानते हैं स्थानीय गतिविधियों के बारे में। तनिष्क हजारीबाग में फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स का आयोजन। हजारीबाग में फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स का भव्य आयोजन किया गया। फेस्टिवल के तहत तनिष्क हजारीबाग में डायमंड ईयरिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकवियर, फिंगर रिंग सहित हीरो के अनेक आकर्षक और आधुनिक आभूषणों की एक अनोखी व विशाल श्रेणी प्रस्तुत की गई। इस्कॉन मंदिर हजारीबाग में 9 दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का दूसरा दिन 24 जुलाई तक होगा आयोजन। बिचौलिया प्रथा के खिलाफ खतियानी परिवार एकजुट हुए। डीवी बरही में अंतर हौस भाषण में अंशुप्रिया अव्वल हुई और उन्हें पुरस्कृत किया गया। पूरे हजारीबाग में नमो श्राद्ध राशन कगिट वितरण अभियान की हुई शुरुआत। शुरू नीट में सफल सुफियान सम्मानित। प्रखंड के केसर गांव में मोमिन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले होनहार छात्र सुफियान मुदस्सिर को सम्मानित किया गया। सत्यम को नीट में 615 अंक मिला। बरही प्रखंड के पंचमाधव गांव निवासी सत्यम कुमार यादव ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 720 में से 615 अंक प्राप्त किए। तीर्थ दर्शन महाअभियान के एक साल पूरे 250 सेवाकर्मी सम्मानित किए गए। दैनिक भास्कर के एक पेड़ एक जिंदगी अभियान के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरकाकाला में कार्यक्रम हुआ। स्कूली बच्चों ने 40 से ज्यादा पौधे लगाए और रक्षा का लिया संकल्प।

डीवीसी कोनार ने बांटे पौधे, ग्रामीणों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा आज, तैयारी पूरी, निषेधाज्ञा लगी।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्ते। विविधा के एक और बेहतरीन और नायाब अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में मैं हूं अमरकांत
1: और मैं हूं मनीषा जैन।
0: आप सभी को नमस्कार। तो मनीषा जी, आज जैसे मैंने अभी कहा कि बेहतरीन और नायाब, ये बोलने की जरूरत रहती तो नहीं है, लेकिन अब रस्म तो अदा करनी पड़ती है।
1: और ये रस्म आपने बखूबी अदा की अमर जी, क्योंकि आज वाकई बहुत नायाब और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हाथ लगी है जिसका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करूंगी, बाद में करती हूँ। और हमारे इस अंक की आज जो शोभा है वो है एक महान गायक और संगीतकार जिनके बारे में हम पहले बात करेंगे। उनका नाम मराठी संगीत से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, बहुत सम्मान से, बहुत आदर से जिनका नाम लिया जाता है, हम आज उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जी हाँ श्रोताओं, सुधीर फड़के।

0: सुधीर फड़के जी का नाम, जैसे आपने कहा कि मराठी संगीत के लिए बहुत इज्जत से लेते हैं, उन्होंने बहुत बहुत काम किया मराठी संगीत के लिए, लेकिन हिंदी में भी जो काम उन्होंने किया, चाहे वो कम ही किया हो काम, लेकिन उनकी हिंदी फिल्मों की रचनाएं, अगर एक ही रचना का मैं नाम ले लूं तो अब जैसे भाभी की चूड़ियां,
1: क्या बात है,
0: अब इस फिल्म का नाम ले ले और ज्योति कलश

0: हल्के इस गाने को अगर हम सिर्फ यूं ही बोल दें, मतलब पूरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है
1: जी,
0: तो भी वो पूरा शरीर झनकृत हो जाता है,
1: बिल्कुल रोमांचित हो जाता है, और वो एक स्वर्णिम उपहार है जैसे सुधीर फड़के जी का हिंदी सिनेमा को दिया गया, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना और वैसा ही दिव्य स्वर लता जी का।
0: अब यहाँ एक और बात मैं करूँगा इससे पहले कि आप अपने पिटारे में से कोई नायाब सी चीज निकाल कर हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएं। सुधीर फड़के साहब की ये कला का ही एक बड़ा जादू कहना चाहिए, चमत्कार कहना चाहिए, कि जहाँ एक तरफ सुधीर फड़के साहब ज्योति कलश छलके जैसी रचना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बना देते हैं खुश है जमाना आज पहली तारीख है,
1: कमर जलालाबादी की वो रचना।
0: आप बताइए मुझे कितना कंट्रास्ट है। आप कोई कह सकता है कि ये ज्योति कलश छलके जिसने गढ़ा है, जिसने रचा है, और किशोर कुमार जैसे महान कलाकार,
1: क्या बात,
0: मतलब ये बताने का कारण सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि एक कलाकार की रेंज क्या है, देखिए आप वो कहां से कहां तक, जमीन से आसमां तक सब कुछ एक करने की हिम्मत रखता, मादा रखता है।
1: बिल्कुल, और ऐसा ही विस्तृत फलक, ऐसा ही बड़ा कैनवास सुधीर फड़के जी का। आज हम याद करें सुधीर फड़के जी को, 25 जुलाई 1919 को इस महान कलाकार का जन्म हुआ और 29 जुलाई 2002 को हम सबसे ये विदा ले गए। उनके बारे में हम क्या कहें, उनकी रचनाओं के बारे में हम आपसे क्या कहें, बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इनका जो मूल नाम था ना श्रोताओं, वो था राम फड़के, और HMV कंपनी के लिए जब वो संगीत दे रहे थे, गीत बना रहे थे, तब उन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया था। जन्म हुआ था कोल्हापुर में, और इन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली थी, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो वामन राव पाध्ये साहब से कोल्हापुर में ही ली थी, और बाद में उन्होंने HMV से करियर की शुरुआत की 1941 में, और प्रभात फिल्म कंपनी से वे जुड़ गए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर 1946 में। तो इस तरह से सुधीर फड़के जी ने एक तरह से संगीत में अपना जो योगदान दिया उसको तो कोई भुला नहीं सकता। आज तक उनके संगीत को लेकर हम सब बहुत रोमांचित होते हैं, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण रचना अमर जी उनकी जो रही है, जिसके बारे में किसी भी संगीत मर्मज्ञ से बात कीजिए तो वो जरूर बात करेगा, और वो है गीत रामायण।
0: जी मनीषा जी,
1: जी
0: मैं आपको ये बता दूं कि गीत रामायण गदी माड़गुड़कर इनकी जो रचना है, ये बहुत बड़े कवि मराठी साहित्य में बड़े सम्मानित कवि हैं, इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, और इनकी रचना को इन्होंने स्वरबद्ध किया, और फड़के साहब और गदी माड़गुड़कर साहब की जो ये जुगलबंदी हुई
1: जी,
0: वो ऐसा एक सुरीला इतिहास है जो सदा सदा के लिए अमर हो गया है, और जब तक संगीत रहेगा तब तक ये गीत रामायण जरूर याद की जाएगी।
1: और हम ये भी बताना चाहेंगे कि 1955 से लेकर 1956 लगभग एक साल तक आकाशवाणी से इस गीत रामायण का प्रसारण हुआ था, और उसके बाद इसने, जैसा आपने कहा ना, कि इतिहास ही रचा है
0: जी।
1: और आज तक हम इसे याद करते हैं, इसे सुनते भी हैं, हमारे कई श्रोता इस वक्त इस गीत रामायण को याद करेंगे। मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है अमर जी कि गीत रामायण की एक झलक हम थोड़ी सी आज के कार्यक्रम में सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मनीषा जी, ये गीत रामायण सुनने के बाद फिर एक ट्रांस में जैसे चले जाते हैं ना, उस तरह से कुछ फील हो रहा है।
1: जी हाँ
0: फिर वो पुराना दौर, वो पुराना समय, वो पुराने रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो याद आ जाती हैं जब भी कभी इस तरह की रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ एक बात और सुधीर फड़के जी के बारे में बता दें कि सुधीर फड़के जी ने न सिर्फ संगीत को रचा बल्कि देश के प्रति, आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है उनके प्रति भी उनके लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने वीर सावरकर पे
1: एक फिल्म बनाई।
0: और इस फिल्म के पीछे एक और बात है कि ये फिल्म मनीषा जी चंदे से बनी है।
1: जी हाँ,
0: इस फिल्म के निर्माण के लिए लोगों से चंदा लिया गया और इस तरह से ये फिल्म बनी। और ये फिल्म सुधीर फड़के जी ने समर्पित किए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो एक कलाकार भी किस तरह से अपना योगदान, अपना सरोकार जाहिर कर सकता है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये बताया सुधीर फड़के जी।
1: जी हाँ, और इसी महान कलाकार की रिकॉर्डिंग आज हमारे पास है। श्रोताओ, उनकी आवाज है, और हालांकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये अवधि इसकी कम है, लेकिन आपको आनंद आएगा अवश्य उनके आवाज को सुनकर, उनके द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम को सुनकर। आइए सुनते हैं अमर जी श्रोताओं के साथ सुधीर फड़के जी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: सुनने वाले भाई बहनों को नमस्ते। आप तो जानते ही हैं कि मेरा कार्यक्षेत्र मुख्यतः संगीत है। इसी माध्यम के द्वारा लगभग 30 वर्ष से मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूं। परंतु एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने संगीत रचना करते समय केवल मनोरंजन ही करना नहीं चाहा। मनोरंजन के साथ साथ और भी एक बात सदा मेरे मन में रही है, एक आदर्श मेरे मन में रहा है। आप पूछेंगे वह क्या है, तो मित्रों मेरा आदर्श है मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान, उसकी सभ्यता और उस सभ्यता से जन्म ली हुई कलाएं। मैं अपने देश की अन्य कलाओं को तो नहीं अपना सका, किंतु संगीत की सेवा मैंने अवश्य की है। संगीत का केवल व्यापार करने से अधिक संगीत के माध्यम का उपयोग करके अपनी संस्कृति के अच्छे आदर्श आपके सामने रखने का प्रयत्न मैंने अवश्य किया है। इसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने प्रयत्न अवश्य किया है, जिसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आवाज आपकी मनचाही गायिका लता जी की है। कविवर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के इस गीत में जिस शुद्ध भारतीय संस्कृति का चित्र उभर कर सामने आता है, उसके लिए आवश्यक बात यह थी कि उसको किसी शुद्ध राग में ही संगीतबद्ध किया जाए। उचित अवसर की यह बात मैंने इसलिए कही कि फिल्मों में गीत बनाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए हम लोगों को सिचुएशन का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कथाकार, कवि और निर्देशक की कल्पना पूर्णतया साकार हो और उस सिचुएशन को पूर्णतया न्याय मिले, इसी प्रकार की स्वर रचना करने का प्रयत्न मैंने अपने जीवन भर किया है।

दोस्तों, इस समय यह अवश्य कहूंगा कि फिल्मों में संगीत देने के लिए मेरी दृष्टि से शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है। कारण शास्त्रीय संगीत ही वह संगीत है जो स्वरों की असली पहचान कराता है, लय का ज्ञान देता है। जिस प्रकार बिना नींव के इमारत टिक नहीं सकती, उसी प्रकार बिना स्वर ज्ञान के सही संगीत निर्देशन नहीं हो सकता। इस विषय में मेरे गुरु स्वर्गीय गायनाचार्य पंडित वामनराव जी उपाध्याय का मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने ही मुझे स्वरों का ज्ञान दिया। जो कुछ भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा है। साथियों, बात ही बात में मुझे अपने गुरु याद आ गए। गुरु और शिष्य में कितना प्रेम होता है, इसका अनुमान वही लगा सकता है जो कभी किसी का शिष्य बना हो। इन्हीं शब्दों के साथ राग जय जयवंती पर आधारित मेरी एक पुरानी फिल्म मालती माधव का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मेरे पुराने मित्र पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा और गाया है लता जी ने।

मित्रों, इस गीत को सुनने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की मिठास बरसों कम नहीं होती और मन उन्हें बार बार सुनना चाहता है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो संगीत हमारे देश के जनजीवन में समाया हुआ है वह लोक संगीत है। लोकगीत सीधे आम जनता की भावना से जन्म लेता है। यही कारण है कि समूचे भारत की पंचरंगी सभ्यता से बहुरंगी लोकगीतों ने जन्म लिया है। मैंने भी जहां अवसर पाया लोकगीत का रंग जमाया। बात लोकगीतों की चल रही है तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि लोकगीत किसी विशेष अवसर या मौसम से संबंधित होते हैं और उसी समय गाए जाते हैं। जैसे नाव चलाते हुए मांझी गीत गाते हैं, झूला झूलती हुई लड़कियां सावन के गीत गाती हैं, और इन्हीं अवसरों में एक अवसर ऐसा भी होता है जब लड़का दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार ससुर के घर बारात लेकर पहुंचता है। उस समय दूल्हा की बहनें या भाभियां गीत गाती हैं। आपने लड़की की विदाई का गीत फिल्मों में बहुत सुना होगा, परंतु मैं आपको दूल्हा की तरफ से गाए जाने वाले गीत को सुनवा रहा हूँ। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और गा रही है आशा भोसले और उनके साथी।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: रखे पतवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो।
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार अभिनेता गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक निर्माता लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी, जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिकाओं में

जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे।
0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
2: प्यादे तो ठीक है
3: जी,
2: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
3: तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
4: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन बिचार दे।
5: क्या खड़ा हो गया से?
6: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुईं। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनकी जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की

0: फिल्म कलयुग में गोविंद निहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पेस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है? उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष ने अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने? बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, तू सुख नहीं बात करे? उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है। पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
2: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज निहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज निहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज निहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज निहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज निहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज निहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
3: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज निहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
4: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज निहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

की कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्नाबीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

की भागीराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा। आउटडोर में ना अच्छी लाइटिंग होती है, ना आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म से गप्पू रोजाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

0: இது ஒரு பொன் மாலை பொழுது.
1: ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक. शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान. प्रस्तुति अनुश्री पाठक. राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं।

0: बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सुहाना।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बनारसी ठग फिल्म का गीत आपने सुना, उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, नीरज की रचना थी इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, सिने जगत के जाने माने गीतकार नीरज की आज पुण्यतिथि है और आज इन्हीं के लिखे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में।

जयदेव का सर्वदिखिया ये गीत आपने सुना, नीरज का लिखा, आशा भोसले और सखियों की आवाजें थी। रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत के पहले श्रोताओं, नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म

0: गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। नीरज के लिखे आज के सभी गीत थे और सचिन देवबर्मन की तर्ज थी इस गीत में। श्रोताओ, यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

रेवत भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, थोड़ा मौसम का तकाजा है, थोड़ा थोड़ा सा प्यार, थोड़ी खुशियाँ, तो सुरों सरगम की बहार लिए और तमाम गीतों को लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर रेवत भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे उन श्रोताओं के लिए बता दें जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं या जो हमारे नए श्रोता हैं, उन्हें लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़ सकते हैं इस पते पर हमारे कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। आज की जो इबारत है श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जो फेसबुक पर देखा है, जिन्होंने उन्होंने तमाम सारे कमेंट्स भी लिखे हैं, तो ये इबारत अपने रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर पढ़ देते हैं। कायनात की सुंदर तस्वीर किसी शहंशाह के ताज में जड़े नगीनों से कम नहीं, इन्हें देखते आंखें थकती नहीं। मुझे याद है वो जीवन से भरी आंखें जो तस्वीर में भी बातें करती थी, वो जुल्फ झूमती हवाओं सी जो प्यार में अरमानों को जगाती है, प्यार बनकर दिल के साहिल से टकराती है। मोहब्बत के मोती थे यादों के कैनवास पर, लेकिन वो बात तस्वीर में कहां जो आपकी बातों में है। तुम्हारे बहुत सारे श्रोताओं ने तस्वीर के बारे में लिखा है। जी हाँ, तस्वीरें जो कभी हाथ से बनाई गईं, कभी दिल में उकेरी गईं, कभी प्रकृति के सुंदर नजारों में नजर आई, कभी जिंदगी में रंग भरती हैं, तो कभी सपनों में चित्र बनकर उभरती हैं। ये तस्वीरें आपको कितना प्रभावित करती हैं श्रोताओ, तस्वीरों से जुड़ी यादें आपको साझा करनी है आज के इस कार्यक्रम में। इन तस्वीरों में कुछ फूल भी रंग भरते हैं, कुछ नजारे भी रंग भरते हैं, कुछ सितारे भी रंग भरते हैं,

0: तस्वीर इस गीत में नजर आती है श्रोताओं, यानी कह सकते हैं कि अभिनेत्री की तस्वीर है। और ये कौन सी अभिनेत्री है ये अगर आपने फिल्म देखी है तो बता सकते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत था, किशोर कुमार की आवाज में, नीरज के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। और हमने गीतकार का नाम पूछा था, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक इसका जवाब भी लिख भेजा है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें ठहरे हुए समय फ्रोजन टाइम को परिभाषित किया करती हैं, जो कि बीते हुए लम्हों को उसी रूप में संजोए रखती हैं जैसे उन पलों को पुराने समय में हमने जिया। जब यादें कुछ कुछ धुंधलाने लगती हैं तब तस्वीरें ही हमें यादों के उन्हीं गलियारों में पहुंचा देती हैं जहां यहां तस्वीरें केवल इन्होंने इनका ये जो मैसेज है वो कहीं इधर उधर हो गया है श्रोताओं, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर ये मिल जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये इबारत यादों के कैनवास पर मोहब्बत की एक ऐसी नज्म है जहां तारीफ से शुरू हुआ सफर सादगी और हकीकत के दीदार पर आकर मुकम्मल होता है। इसमें मोहब्बत की शिद्दत भी है और उर्दू हिंदी शायरी की वो सोंधी सी महक भी। जिस तरह कायनात की तुलना शहनशाह के ताज में जड़े नगीनों से की गई है वो पढ़ते ही जहन में एक भव्य और चमकदार दृश्य पैदा करता है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं गीतों के बारे में कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताज महल और लीडर फिल्म के गीत को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि तस्वीरों यादों और घटनाओं का जीवंत प्रमाण होती हैं। तस्वीरों को देखते ही हम एक सेकंड में यादों के गलियारों में पहुंच जाते हैं। तस्वीरें अतीत को जगाती हैं और अगाध भविष्य के लिए धरोहर की तरह हैं, जैसे वो खूबसूरत ताजमहल या फिर जीवन से भरी तेरी आंखें, दुनिया में ये सब खूबसूरत कायनात की।
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक जारी, विपक्षी दलों के नेताओं ने वॉकआउट कर टीएमसी के बागी सांसदों को बैठक में बुलाने का जताया विरोध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट जमा करने का दिया निर्देश। राज्य के उत्पाद मंत्री योगेंद्र महतो ने नई उत्पाद नीति की सराहना की, कहा यह राज्य और व्यापारियों के हित में है, लक्ष्य से अधिक राजस्व की होगी प्राप्ति।

0: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहली बार संथाली भाषा की फिल्म आंगेन को मिला नेशनल अवार्ड। जमशेदपुर के रविराज मुर्मू बने देश के बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। और राजधानी रांची में 26 जुलाई से दिखेगा फुटबॉल का रोमांच। खेल प्रेमियों को स्टेडियम में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए दर्शकों को दिया जाएगा टिकट। और अब समाचार विस्तार से। मॉनसून सत्र से पहले आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक चल रही है। बैठक में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके सहित कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि 15 मिनट बाद विपक्षी सांसद बाहर आ गए और बैठक का वॉकआउट किया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों को बैठक में क्यों बुलाया, जबकि स्पीकर ने उनके गुट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। हालांकि विपक्षी सांसद दोबारा मीटिंग में शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। परीक्षा एजेंसी ने फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट जमा करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। राज्य के उत्पाद एवं पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा है कि नई उत्पाद नीति राज्य हित और व्यापारी हित में है। इससे राज्य का खजाना भर रहा है, इसलिए इसकी समीक्षा की जरूरत अभी नहीं है। गिरिडीह परिसदन में कल उन्होंने कहा कि एक्सपायरी बियर बेचने मामले में दोषियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब आने के बाद कार्रवाई होगी।
1: जो उत्पाद नीति हमने बनाया 2025, बेहतर से बेहतर रूप से उस नीति का धरातल पर कार्य दिख रहा है। राजस्व का भी जितना नुकसान हुआ था पूर्व में, जितना टारगेट है वो राजस्व भी अचीव हो रहा है और टारगेट से हम ऊपर जा रहे हैं। हमने देखा होगा कि 25-26 में 2700 करोड़ का टारगेट लक्ष्य था सरकार का, 2710 करोड़ हम लोग ले, इस बार 4600 करोड़ का लक्ष्य। हम समझते हैं 5000 करोड़ उसको पूरा करेंगे।
0: इस दौरान मंत्री श्री महतो ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी फाइल लंबित नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ब्रजनंदन प्रसाद ने कहा कि उलीहातू गांव को आदर्श जनजातीय मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वे कल खूंटी में उपायुक्त और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने उलीहातू में समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ बिरसा ओड़ा का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। नई दिल्ली में आयोजित 72वें फिल्म पुरस्कार समारोह में गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में पहली बार संताली भाषा की शॉर्ट फिक्शन फिल्म आंगन के लिए झारखंड के रविराज मुर्मू को बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर का सम्मान मिला है। इस उपलब्धि से न केवल संताली सिनेमा बल्कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। 13 मिनट की इस फिल्म में ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय जीवन शैली को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल, एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एनटीपीसी और पीयूवीएनएल ने संयुक्त रूप से रांची में द्वितीय ऐश यूजर मीट 2026 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य अपशिष्ट से समृद्धि तक परिवर्तन की सशक्त एवं सतत यात्रा के बारे में लोगों को अवगत कराना था। मौके पर वन पर्यावरण विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने फ्लाई ऐश के सदुपयोग की जानकारी दी।
2: तो हमारे राज्य में एसिडिटी सॉइल का बड़ा इश्यू है, उसमें फ्लाई ऐश मिक्स करके ऑर्गेनिक मैनर के साथ करके इसका पोटेंशियल यूज हो सकता है ताकि लैंड का रिक्लेमेशन करने

0: इसी तरह हमारा जो माइनिंग एरिया में लैंड रिक्लेमेशन के लिए यूज हो सकता है। हमारे राज्य में अभी एक डेवलपिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैपनिंग, तो सब में भी ब्रिक्स का यूज हो सकता है।
1: वहीं PVUNL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AK सहगल ने कहा कि ऐश को अब एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो सतत अवसंरचना विकास एवं आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। NHAI रांची के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि फ्लाई ऐश का इस्तेमाल सड़क बनाने के कार्यों में किया जा रहा है, इससे मिट्टी की बचत हो रही है।
2: अभी हम लोग फ्लाई ऐश को अपने एम्बेंकमेंट में यूज कर रहे हैं। जहां कहीं भी आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर बन रहा है, ROB बन रहा है, तो उसके अप्रोच में जब आड़ीवाल हम लोग बनाते हैं, आड़ीवाल के बीच में जो फिलिंग मटेरियल होता है उसके रूप में हम लोग फ्लाई ऐश का यूज कर रहे हैं। और वहां पर पहले क्या होता था, मिट्टी से हम लोग भरते थे उसको, और इससे हमारी मिट्टी की बचत हो रही है। तो इस तरह से हम लोग इस वेस्ट मटेरियल का यूज करके पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं।
1: पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सिलारी गांव में कल देर शाम ट्रांसफर का विद्युत फॉल्ट ठीक कर रहे बिजली मिस्त्री सत्येंद्र महतो की हाईटेंशन तार में सटने से मौत हो गई। जूनियर इंजीनियर ने विभागीय प्रावधान के तहत 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। इधर सहायक अभियंता विकास कुमार ने आज जानकारी दी कि शटडाउन लेने के बाद भी बिजली मिस्त्री को करंट कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। नौकरी देने के मामले में JA से बात कर निर्णय लिया जाएगा। जमशेदपुर में सुशील डे नामक युवक के कथित अपहरण मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी SP ललित मीणा ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
3: जमशेदपुर कोर्ट है, वहाँ के पास से एक व्यक्ति जिसका नाम है सुशील डे, उसे कुछ लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। सभी जो आगे वाले रूट थे या जो भी संभावित रूट थे उन सबको सक्रिय सचेत किया गया है, और इस चीज में जितने भी लोगों की संलिप्तता थी उनमें से 2 लोग हमारी गिरफ्त में है और कुछ लोग हैं जिनको अभी कार्रवाई करना है।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची में 135वें डूरंड कप प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में ग्रुप सी के मुकाबले होंगे। पहले दिन 26 जुलाई को जमशेदपुर FC और डिफेंडर्स FC के बीच मैच होगा। गौरतलब है कि खेल प्रेमियों के लिए यह मैच निशुल्क होगा, लेकिन भीड़ और अव्यवस्था उत्पन्न न हो इसके लिए दर्शकों को टिकट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे दिखाने पर ही स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक जारी, विपक्षी दलों के नेताओं ने वॉकआउट कर TMC के बागी सांसदों को बैठक में बुलाने का जताया विरोध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को OMR शीट की जांच के लिए केवल असली शीट जमा करने का दिया निर्देश। राज्य के उत्पाद मंत्री योगेंद्र महतो ने नई उत्पाद नीति की सराहना की, कहा राज्य और व्यापारियों के हित में है, लक्ष्य से अधिक राजस्व की होगी प्राप्ति। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहली बार संताली भाषा की फिल्म आंगिन को मिला नेशनल अवार्ड। जमशेदपुर के रविवाज मुर्मू बने देश के बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। और राजधानी रांची में 26 जुलाई से दिखेगा फुटबॉल का रोमांच। खेल प्रेमियों को स्टेडियम में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए दर्शकों को दिया जाएगा टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: यही प्यार की मोती स्मृतियों के पर्दे पर बिखरने लगते हैं, तब लगता है वास्तविक अनुभूति की अनोखी बात। और एक और श्रोता लिखते हैं, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा कैनवास पर बनाई गई तस्वीर में इस कायनात के सारे रंग मौजूद हैं, रहस्य, रोमांच, मुस्कान, शालीनता, सुंदरता, सब कुछ ही तो समाहित है। आप जिस एंगल से इस तस्वीर को देखोगे, इसकी सम्मोहित करती आंखें उसी और से आपको दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि हम तस्वीर नहीं देख रहे बल्कि तस्वीर हमें देख रही है। तस्वीर बना बीते हुए दिनों की यादों का पिटारा होती है। आज भी जब मैं पुरानी तस्वीरों को देखता हूँ तो सारी यादें मस्तिष्क पटल पर चलचित्र की भांति घूम जाती हैं और बीते दिन याद आ जाते हैं।

कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखे हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। और एक और श्रोता ने लिखा है शब्दों के बारे में कि तस्वीर शहंशाह, जीवन, आंखें, जुल्फ, झूमती, मोहब्बत और बात, ये शब्द शायद हो सकते हैं। अब आपको ये तस्वीर किनकी बन रही है पहचानना है, और ये अदाकार कौन है।

भारत भूषण पर फिल्माया गया संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गीत था शैलेंद्र का लिखा, एसएन त्रिपाठी की तर्ज थी, मुकेश की आवाज थी। एक श्रोता लिखते हैं, आज इबारत यादों के कैनवास पर तस्वीरों की बातें कर रही हैं, इसलिए गीत इन्हीं पर आधारित होंगे और कुछ गीत इन्होंने बताए हैं, बेशक यही गीत हैं और तस्वीरों की बातें हम कर रहे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीतों के बारे में और उसके बाद तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी, पर ऐसे तो हो जिस तरह मौसम बदलता है तुमको भी देखूं रंग बदलते हुए। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर आंखें जीवन जुल्फ प्यार हवा मोहब्बत तस्वीर मोती साहिल ये वर्ड्स हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, आज के शब्द जीवन आंखें ठंडी हवा जुल्फ मोहब्बत और तमाम इन्होंने शब्द लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गद्यांश में आज तस्वीरों की बातें हुई हैं जो प्यार के एहसासों और यादों की महफिल सजाए हुए हैं। एक और श्रोता लिखती है, तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसे देखते ही मन उड़ने लगता है, आज तस्वीरों के माध्यम से सुंदर गीत सुनेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत तस्वीरों में समाई हुई है, ये तस्वीरें सिर्फ कैमरा द्वारा या कागज के कैनवास पर खींची रंग भरी लकीरें नहीं, बीते हुए लम्हों की यादें हैं जिसे देख मन उन पुराने गलियारों की ओर चल पड़ता है, जिसे देख दिल बोल उठता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ एक बात है, जो बात तुझमें मुझमें या हम में है वो तस्वीर में नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें देखकर दिल बोल उठता है। हमने देखी है तस्वीरों में उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। और कुछ बातें इन्होंने

ने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमारे पुरानी यादों की गठरी खुलने वाली है। सच में हमें काफी समय हो गया है, हमारी अलमारी में रखे एल्बम को देखा नहीं हमने। आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, जरूर हम एल्बम में सजाए फोटो का दीदार करेंगे और सुरीला सफर में बने रहेंगे। जी हाँ, तो बने रहिए सुरीला सफर कार्यक्रम में और बताइए कि एल्बम में कौन कौन सी तस्वीरें आपने सजा रखी हैं। और हाँ, क्या आपके एल्बम में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं?

आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं, तस्वीर तेरी दिल में और तमाम गीतों को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर के बारे में लिखना, तस्वीर बनाता हूँ नहीं बनती और एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती, और गीतों को मिलाकर इन्होंने कुछ पैरोडी की तरह बनाया हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं तस्वीर और हकीकत का रिश्ता बड़ा अजीब है, तस्वीर वक्त के समंदर से चुराया हुआ एक ठहरा हुआ लम्हा है जहाँ न कभी उम्र बढ़ती है और न मुस्कुराहट फीकी पड़ती है, जबकि हकीकत लगातार बहती हुई नदी है जो हमें आज के सच से रूबरू कराती है। तस्वीर अतीत की एक सुरक्षित तिजोरी है जिसे विपरीत हकीकत गतिशील है, जहाँ वक्त का गुजरना चेहरों चेहरे की झुरियाँ और अनुभवों का जुड़ना शामिल है। तस्वीरें यादों का आईना होने के नाते बेहद जरूरी हैं, लेकिन जब कोई हकीकत में हमारे सामने बैठकर बात करता है तो उसकी आवाज की खनक और सांसों की गर्माहट जो जीवंत एहसास देती है उसे दुनिया का बड़े से बड़ा फोटोग्राफर भी कभी कैमरे में कैद नहीं कर सकता, ऐसा इनका लिखना है। कश्मीर की तस्वीर के बारे में हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के बारे में पूछा था। क्या आपको सनसेट की तस्वीरें निकालना पसंद है?

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया। और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती, समुद्र में गोती लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान

उनको छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज अबाउट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड एंड दैट इज आइज। विदाउट दैट गिफ्ट ह्यूमन लाइफ इज यूजलेस। ब्यूटिफुल आइज आर पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड पोएम्स as well as prose have described the beauty of eyes. All the best. इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं। कुछ आंखें, कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं। वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं। मोहब्बत की मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहां सहेज पाती हैं। इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है, वो बात तस्वीर में कहां। जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आप फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर नजर आती है और ये अभिनेत्री कौन है।

जागीरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोताओ, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल लुधियानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित करती है। समय का चक्र इन घावों पर मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ साफ

दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिटती नहीं है, वो धुंधली जरूर हो जाती हैं। जी हाँ, इन्हीं तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और मुस्कान साथ हों तो तस्वीर सिर्फ देखी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताना है। और श्रोताओं, आजकल तो लोग यानी कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं ऐसी जगहों की तरफ घूमने चल दिए होंगे जहां बारिशों में बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। तो क्या आप भी ऐसे सफर पर हैं, या कभी आपने बारिशों की तस्वीरें किसी खास जगह पर उतारी हो, तो आप हमसे जरूर कह सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर की बात कहूं तो जब मैं एनसीसी कैंप भोपाल गया था तो मुझे राइफल SLR चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है, जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूँ, बाएं हाथ में मेरे मैनेजर सर है। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सुरीला सफर।

अभिनेत्री मधुबाला की जो तस्वीर है वो बहुत सारे शीशों में नजर आती है श्रोताओ, इन शीशों की कुछ खासियत है, इनके बारे में क्या आप जानते हैं तो हमें जरूर लिखें। मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे।

मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शकील बदायूं का लिखा ये गीत था। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति के रंग कभी बनावटी नहीं होते, इसलिए वे हमेशा दिल को अच्छे लगते हैं। शायद सच्ची खूबसूरती भी वही है जो बिल्कुल सहज हो। हर फूल एक रंग है, हर पत्ता एक मुस्कान और हर सुबह प्रकृति की बनाई हुई एक नई तस्वीर। बस उसे महसूस करने का मन होना चाहिए। एक और श्रोता लिखती हैं, रात में जब चांद की रोशनी सफेद संगमरमर से बने ताजमहल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ताजमहल चांदी की हल्की परत से ढक गया हो। यमुना नदी के शांत जल में ताजमहल का प्रतिबिंब इस सौंदर्य को और भी मोहक बना देता है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार

0: के सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में।
1: श्रोताओं, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या तस्वीरें बनाना आपको पसंद है? क्या आप तस्वीर बनाते हैं?

माला सिन्हा और देवानंद पर फिल्म है गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म माया से मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा सलील चौधरी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखती हैं, सुंदर चेहरा और सुंदर आंखें केवल ईश्वर के द्वारा ही बनाई जा सकती हैं, असलियत में चित्रों में नहीं। एक और श्रोता लिखती हैं, चांदनी रात में

खिली किसी मुस्कान सी वो हसीन तस्वीर जैसे किसी खूबसूरत नज़्म का अधूरा शेर हो। इसे निहारते हुए ऐसा लगता है मानो थम गया हो वक्त। वो अल्लड़ अदाएं जो तस्वीर में भी एक मदहोश कर देने वाली दास्तान कहती हैं, और इसके आगे भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, कायनात की तस्वीर ईश्वर ने न जाने कौन से कलम से, कौन से रंगों से उकेरी है, कौन से कागज कैंची से पत्ते काटे, अलग अलग शेप पर साइज सेम, और कौन से महीन ब्रश से ऐसे रंग भर दिए, रूम रूम साफ दिखता है, कितना भी कोशिश करो वैसा फिर कोई नहीं बना सकता।

बारह तरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। खुमार बारह बंकवी के बोल थे, शौकत दहलवी के तर्स आपने सुनी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैंने बहुत सी पेंटिंग जिसमें सीनरी फूलों की अल्पना मॉडर्न पेंटिंग वगैरह बनाई है, शादी ब्याह के बाद अब कुछ खो गई हैं, कुछ खराब हो गई हैं। तो पेंटिंग जो है, मेरे चाचा को तरह तरह की पेंटिंग बहुत पसंद थी, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की बहुत कदर की और सामान जैसे ब्रश, कलर, बोर्ड बहुत खरीद कर दिए। अब वो नहीं है और उनके घर से पेंटिंग कहाँ गई पता नहीं। मेरी एक मॉडर्न पेंटिंग मेरे पिताजी के एक मित्र गए थे। जी हाँ, अगर कोई कला आप में है तो उसके लिए लोग आगे आएं और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो दें तो क्या ही अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ब्रश और पेंट्स की बात कही। एक और श्रोता ने लिखा है कि 1970 में बहन की शादी की ब्लैक एंड वाइट एल्बम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है। उस समय के छोटे छोटे बच्चे आज 56-60 साल के हो गए हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज हमारे शहर का मौसम खूबसूरत है, मौसम ठंडा है, रिमझिम रिमझिम फुहार हो रही है, मैंने इस मौसम की तस्वीर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। पिछले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, जो गीत आपने सुना, और इस गीत में आप बताइए कि अभिनेत्री कौन है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की, काली घटाओं की, रात में चांद की, तारामंडल की, सबकी फोटो खींचना बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सूर्योदय, सूर्यास्त, नदियां, तालाब, झील, पर्वत, देवदार और वृक्ष पक्षी, ये सब बनाने में अच्छा लगता है।

शहर का तस्वीर है इस तस्वीर में, ताजमहल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस तस्वीर में जो मुकम्मल बन नहीं पाती, ये है बीना रॉय की तस्वीर और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। रोशन की तरह थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जी हाँ, परिवार के संबंधियों, यात्रा, प्रकृति सभी की हैं तस्वीरें, और नाना नानी, दादा दादी जी, माँ पापा की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी हैं। तो तस्वीरों की यादों को ताजा करता कार्यक्रम सुरीला सफर अब यहीं संपन्न होता है। आप रहिए विविध भारती के संग। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए विविध भारती के संग, क्योंकि आगे भी है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है किताब पर। कहा जाता है कि समय बदल गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं और अब किताबों के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, वो आज भी किसी मेज पर खुली हुई मिल जाती हैं, किसी के बैग में रखी होती हैं या किसी पुस्तकालय की अलमारियों में।

पाठकों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, और किसी शांत कोने में बैठा पाठक अब भी उनके पन्नों में खो जाता है। जिंदगी में कोई किताब हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बशर्ते वो अच्छी तरह पढ़ी गई हो या पढ़ी जा रही हो। कुछ ऐसी किताबें हमेशा जीवन की यात्रा में शामिल रहती हैं जो ईमानदारी से पढ़ी गई हो। ना तो किताबें हमारा साथ छोड़ेंगी और ना ही हम उन्हें त्याग पाएंगे, क्योंकि जो पन्ने हमने पढ़े वो बहुत बहुमूल्य थे। किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो समय की धड़कन को अपने भीतर संजोए रखती हैं। उनमें बीते युगों की स्मृतियां, वर्तमान की संवेदनाएं और भविष्य के सपने बसे होते हैं।

0: किरदार का।
1: जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ता है तो वो केवल अक्षरों को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक पूरी दुनिया से परिचित हो रहा होता है। आज भले ही मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन किताबों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तकनीक ने तो किताबों को और अधिक सुलभ बना दिया है। ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स के रूप में पुस्तकें हर दिन नए पाठकों तक पहुंच रही हैं। माध्यम बदल सकता है, लेकिन ज्ञान और साहित्य की प्यास वही की वही रहती है। किताबें मनुष्य को सोचने की शक्ति देती हैं, वो कल्पना को विस्तार देती हैं, संवेदनाओं को गहराई प्रदान करती हैं और जीवन को समझने का दृष्टिकोण देती हैं।

एक अच्छी पुस्तक पाठक के भीतर प्रश्न भी जगाती है और उनके उत्तर खोजने की प्रेरणा भी देती है। जब भी कोई बच्चा पहली कहानी पढ़कर मुस्कुराता है, कोई युवा किसी प्रेरणादायक पुस्तक से नया संकल्प लेता है, या कोई बुजुर्ग कविता के पन्नों में अपनी स्मृतियों को खोजता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि किताबें आज भी जीवंत हैं, वो पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैला रही हैं। सच तो ये है कि सभ्यता के विकास की यात्रा में किताबें हमेशा इंसान की सबसे विश्वसनीय साथी रही हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, शब्दों की ये दुनिया अपनी महक कभी नहीं खोएगी। किताबें पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि मानव मन आज भी ज्ञान, संवेदना और आत्मिक समृद्धि की तलाश में है, और इस तलाश का सबसे सुंदर पड़ाव आज भी एक अच्छी किताब ही है। किताबें मौन होकर भी बहुत कुछ कहती हैं। जो उन्हें पढ़ लेता है, वो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने लगता है।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

0: और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
3: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की तीन दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
4: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी।

0: डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, भरत व्यास की रचना थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
5: वो तेरे प्यार का।
4: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
6: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
4: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
7: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
4: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
8: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी।
4: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे लाड साहब फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश आपने सुनी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: होट

0: है। और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीले गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हो आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से, केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मनचाहे गीत।

फिल्म आंधी का दुगाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विलासागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी, माहिती चंद्रया, मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने। और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टू बिट्टी, अरिहंत, सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहाँ बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब?
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार हूँ। सुन रहे हैं क्या?
2: हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ, सब ठीक ही है।
3: क्या कह रहे हैं आप?
2: राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था

0: से बैठिए ना।
1: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
2: इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
1: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
2: आप जा कहाँ रहे हैं?
1: क्यों
2: नहीं पूछना चाहिए क्या?
1: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
2: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
1: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
2: क्या कह रहे हैं आप?
1: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ, चला जा रहा।

0: अब क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्यों कि बुलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश का रंग तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
1: और कोई ऐसे रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके।
0: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित के यहाँ जाएगा?
1: फिर कहाँ गए होंगे?
0: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
1: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
0: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहते?
1: गलती तो जरूर हुई है माँ।
0: अब कहने से क्या होता है राजेश? तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
1: ऐसा न कहो माँ।
0: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
1: ऐसा ना कहो माँ,

0: ब्राह्मण तो हो।
1: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
0: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
1: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
0: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
1: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
0: अपनी ओर से तुम्हें पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
1: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई, मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठिठुर रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
0: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो, जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
1: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी।
0: ये क्या कहती हो माँ?
1: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
0: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
1: तुम ही बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ।
0: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
1: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
0: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
1: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी आई हूँ माँ।
1: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
1: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
1: भूख होगी तो खा लूंगी।
0: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
1: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
0: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
1: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
1: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ, तुम कहते हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
1: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
0: ये सब क्या कह रही हो तुम, बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
1: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूँ माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ। अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूं माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
1: ये सब क्या कहती है बेटी, ये सब मत कहा मत कहा, जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
2: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: मैं अभी जा कहा रही हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम तुम्हारे पिताजी

0: के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
1: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है।
0: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसी होंगी, उनकी रक्षा करना भगवान।
1: ये एकाएक क्या हो गया भैया? तुम सब कुछ जानते हो नरेश, मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सम रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, कभी आपका तार मिला।
2: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
1: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
2: हाँ, मिल गया।
1: लेकिन लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कहकर गए थे? कैसे गए यहाँ से?
2: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
1: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
2: दूसरा क्या?
1: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
2: तुम सब समझते हो नरेश।
1: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
2: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
1: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
2: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
1: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
2: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
1: गए तो थे।
2: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
1: हुई थी।
2: तुमने क्या कहा था?
1: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
2: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
1: आपके यहाँ क्या बातें हुई?
2: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
1: उन्होंने क्या कहा?
2: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
1: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
2: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ?
2: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
1: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था?
2: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
1: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
2: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था, और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
1: जानता हूँ मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
2: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
1: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
2: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
1: समस्या? क्या समस्या है?
2: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
1: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
2: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
1: समस्या तो कठिन है ही।
2: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाएं। कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
1: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
2: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
1: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।
2: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है, और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
2: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते।

0: जैसे भी हो हमें लोगों को निभाना है।
1: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया,
0: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
1: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा, पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
2: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
0: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
2: कितने दिन तो हो गए।
0: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
2: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
0: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
2: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है, अब क्या होगा?
0: जो ईश्वर की इच्छा होगी, ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
2: क्या सोच रहे हो तुम?
0: अब मैं क्या सोचूं माँ?
2: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो माँ।
2: अब मैं क्या करूंगी बेटे, अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
0: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
2: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
0: यह सब मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
2: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
0: होगी क्यों नहीं माँ, कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है, हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
2: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
0: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
2: इतना आसान है बेटे?
0: है कि नहीं?
2: इतने रुपए लगेंगे,
0: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
2: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
0: मैंने नरेश से बातें की है।
2: क्या कहता है वो?
0: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
2: और उससे कुछ ना हो सका तब?
0: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
2: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
0: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
2: कौन करेगा इतना खर्च?
0: क्यों, मैं करूँगा।
2: सचमुच?
0: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
2: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
0: हाँ सोच ही लिया है।
2: और बहू से पूछा है तुमने?
0: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
2: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
0: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
2: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
0: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
2: सोचना क्या है?
0: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
2: कैसी इच्छा?
0: कृष्णा की शादी की।
2: हाँ शादी तो करनी ही है।
0: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
2: उसमें तो बहुत रुपये लगेंगे।
0: हाँ रुपये तो लगेंगे।
2: आएंगे कहाँ से?
0: उपाय करना पड़ेगा।
2: क्या उपाय करेंगे आप?
0: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
2: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
0: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
2: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
0: तो दूसरा कौन करेगा?
2: और नरेश?
0: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
2: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
0: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना समझे तब?
2: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
0: और यदि वो समझने से इनकार कर दे तब?
2: तब परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
0: और क्या सोचना पड़ेगा?
2: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
0: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी, वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे।

0: हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
1: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें। अपने 3 बच्चियाँ हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
2: भैया
0: नरेश,
2: चक्कर दिखे थे भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया, पंखे से छोड़ गई है।
0: था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश, कृष्णा ने लिखा है।
3: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है। मेरे कारण पिताजी घर से चले गए, मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो, मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी माँ। मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो, मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती। मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई? लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ, तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: आप ही से तो पिछली बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भी मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए, देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपवाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपवाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहां भी हो लौट आइए, हमें माफ कर दीजिए। पूरा घर दुख में डूबा हुआ है, कृष्णा नहीं रही, माँ मरना शून्य है।
1: माँ मरना शून्य।

0: ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
1: क्या बात है भाई साहब?
0: मैं कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णा नहीं रही, क्या मतलब है इसका? कहां नहीं रही दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
1: ये आपके घर की चिट्ठी है, लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
0: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
1: आपकी पत्नी बीमार है।
0: आप मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई, कैसे मर गई? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूं, तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? हा? क्या उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है।
1: लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
2: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. Beck ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: ये है विविध
4: भारत। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया है। लेख में बताया गया है कि नवाचार और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से पारंपरिक भारतीय शिल्प कला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। नवीन जिंदल समूह ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए वैश्विक परमाणु प्रौद्योगिकी कंपनियों से बातचीत शुरू की है। समूह की योजना झारखंड समेत 9 से अधिक राज्यों में करीब 18 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने की है, जिस पर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाली फिल्म आंगेन के निर्देशक रवि राज मुर्मू को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का सम्मान मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि रवि राज मुर्मू के साथ साथ झारखंड और संथाली भाषा के लिए भी गर्व की बात है। जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी की रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं से जुड़ी प्रणाली के उपचार पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इनसे जुड़ी बीमारियों के अत्याधुनिक उपचार पर चर्चा की। नई दिल्ली में न्यूरो विशेषज्ञ डॉ पीयूष तोमर ने आधुनिक तकनीकी और उपकरणों की जानकारी दी। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। इधर खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से दो गांवों के बीच बनी पुलिया तेज बहाव में बह गई। पुलिया के ध्वस्त होने से दर्जनों गांवों का सोएको से सीधा संपर्क टूट गया है। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित झारखंड की सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि झारखंड और पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: की पहली किताब आ गई थी, मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
6: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी। और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी एक सोते वक्त एक कहानी रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुनाओ, मुझे सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ, और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई। और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था, लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से कि नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई, बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैं नहीं रचाई, कहते और कोई कहानियां? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है, तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
5: तो मजा था कि सजा थी?
6: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ मजा जरा भी नहीं लगता था पहले, तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
5: सुंदर नाम।
6: लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है क्या कहते हैं बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
5: जी जी। हाँ
6: मेरी
5: जी।
6: माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
5: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
6: करेक्ट,
5: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
6: जी
5: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको
6: इसमें कोई शक नहीं, और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे, कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में, मैंने तो बहुत कहानियां सुनी। तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी, उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह, फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की, 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
5: और पुणे आ गई
6: और नाना के पास।

0: मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा नाम कहते थे, और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम
1: परांजपे जी। हाँ। एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
0: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है। तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
0: ओ डियर, चलो ये मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए। वो तो अभिनेत्री भी थी।
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू। हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता अपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी बाको कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांघर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड, हाँ, मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की, हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए। रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोड़ीवाड़ा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो, और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोड़ी टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनके, वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ, और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैंसलर्स की पढ़ा, और स्टैंसलर्सकी का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: है
0: कि रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हट के, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
1: हाँ, कमाल की बात है। हाँ, बड़ी शरारती थी।
0: नहीं, शरारती नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम सही की तरह पिटाई करने का। हाँ, और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है, माँ पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
1: वाह वाह, हाँ, बड़ा प्यारा
0: तो
1: था।
0: हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं, कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही, मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं। और बाकायदा मुहूर्त देखा, और फिर तुलसी बाग करके पुणे में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा। गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था।

0: और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे। मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या करता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से। और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह,
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ, गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब, हाँ, ये तो इतनी भव्यता के साथ, हाँ, शादी की गई
0: जी। और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई।
1: हाँ, ये भी एक विडंबना, हाँ, की बात,
0: लेकिन
1: है,
0: हाँ,
1: ये वाला जिक्र, हाँ, आगे की तरफ करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे, हाँ। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों नहीं,
1: फिल्म, हाँ, में जो बात आती है गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
0: हाँ, हाँ।
1: मुझे लगता है उसी जज्बात को वो आगे बढ़ा,
0: क्या बात,
1: तो वो गाना सुनते हुए आगे बढ़ा।
0: जी, बात

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स डिकेंस और सब बड़े साहित्यकारों को पढ़ रखा था,
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन, स्कॉट, और ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स,
1: यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है, भारा भागवत और दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिड़क की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पढ़ रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात, वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी, बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भड़ैनी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे
0: जी,
1: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
0: जीवन शैली का
1: बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
0: बड़ा मजेदार है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैसलाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बाणूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सिंगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है, मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे कहानी। और वो जैसे कहानी झुलसती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता, और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
0: हाँ,
1: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूं, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई। राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे, गाने वाले, तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हौसा वाडकर की भूमिका थी, वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो

0: वो कहते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुराई की नोक अटकती है। हाँ, सुराई की नोक ही कहते हैं ना, तो
1: जी
0: सुराई की नोक अटकती है और वो सुराई साथ साथ उनके वो जा
1: खींची
0: रही
1: चली
0: है,
1: आती है।
0: और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना, तो उसने कहा बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा
1: जी
0: लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था।
1: वाह
0: ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ,
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है, पता
1: गजब गजब
0: नहीं।
1: गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा हैं वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार देते
0: जी
1: हैं, वो
0: देखो वो
1: फिल्म
0: साथ साथ होता रहा
1: कह
0: है
1: के
0: ना।
1: सुनाते हैं।
0: हाँ
1: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है,
0: हाँ
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा
0: जी
1: बनाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: लेकिन दो बातें जो है वो
0: हाँ
1: मुझे बड़ी जरूरी लग रही हैं
0: हाँ
1: पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली
0: हाँ
1: ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ
0: जी
1: भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी,
0: हाँ
1: वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है।
1: जी
0: हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू हुई। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांच पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था।
1: वाह,
0: अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि
1: जी
0: ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे। कहते हैं मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकिन जिमखाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल। हाँ,
1: ओहो
0: अब मुझे माँ का एक और ये बताना, बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे,
1: जी
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और
1: वाह,
0: स्तोत्र भी, अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी रावण सूत्र जटा कटा हसम्रम ब्रह्म
1: वो पूरा याद है, शिव तांडव स्तोत्र
0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और बिजान से कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना, तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया। सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर

0: जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी
1: होते हैं,
0: वो ही करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं, माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो, तो आप ऑडिशन के, मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह। ओहो, मायूस हुए सब लोग तो नहीं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं, आप क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप, अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
1: जी।
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया, जैसे तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए, और
1: वाह।
0: मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया। और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं नहीं, ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पूना एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
1: अच्छा, अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई,
0: 3 गुना। फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो एक दो दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पियर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे, जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमीनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह, कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था, और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था, तो मैंने फोन किया 199 को, और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुलकर के घर का फोन दे सकती हैं?
1: वाह वाह वाह।
0: तो दो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो, तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के, मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना? हाँ हाँ जी, हाँ मैं बोल रही हूँ, अरे ताई। एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो बेचारी इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से।
0: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा, वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं, जो आनंद वो पहले उसमें था ना, इताई ताई बोलते हैं यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, गदी माडगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी, और उस फिल्म का

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर, एक पहा किती तरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आकर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है और हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ, एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुल देशपांडे।
0: अरे वाह वाह,
1: कि सही तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी,

0: क्या बात, शाबाश आशीष लीजरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बाल उद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाशा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांचे कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से, तीन नंबर बस अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूँ हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
1: वाह
0: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम बताती हूँ, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट इन ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर हाँ ये शांति दूत बनेगा फला धमका ये वो, और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे। एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली काई गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, माउस प्रकाशन में छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में। और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
1: वो एक लड़की दिखती
0: है, वो नीचे दिखती है नेहा,
1: पत्ते से फैसला करते हैं कि जिसके पास रानी आएगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं, और वो दो बुस्टंडे बिचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
1: बिल्कुल बारी बारी से, और फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बद्दूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बद्दूर का गाना लेके आते हैं, हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर की
0: कहानी चल रही है। कौन सा गाना सुनाओगे
1: आपकी पसंद?
0: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार,
1: बिल्कुल सुनते, काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते हैं।

ಸಗಿರ ಬಾಯಿ ಸಗರಿ ನಗರಿ ಬದಲ ಕಾಲಿ ಘಡಿ ದಾಡಪಡಿ

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहां से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है, अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा, और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे, अब अगला शो कब है? तो मैं, अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ, हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में। हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे, और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है
1: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना,
0: जी।
1: इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी।
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
0: जी, तो वो
1: हाँ
0: अखबार में विज्ञापन देखा आपने।
1: हाँ तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य, यही है नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो
0: अच्छा, ऐसे ही कह
1: सकता है।
0: दिया।
1: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से, और फिर 1-2 महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कैसे थे? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। 1 महीने में शादी आपको पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते 1 महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे, वगैरह वगैरह बातें होंगी। एनीवे, तो आई ज्वाइंड एनएसडी एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड। फॉर द फर्स्ट ईयर इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर, क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा एनएसडी में, एंड वो था इब्राहिम अलकाजी।
0: क्या बात
1: तो
0: है।
1: वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब 7 जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट इज फैंटेस्टिक, वॉज अ फैंटेस्टिक टीचर, बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
0: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने, मेरा ख्याल है, सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था।
1: नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
0: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए।
1: जी जी
0: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
1: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया,
0: पत्नी जो होती है,
1: हाँ, कालिदास की पत्नी
0: जी,
1: रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ हाँ हाँ करा, उनके आगे अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स मैंने एंटिगनी में इजमिनी का रोल किया।
0: वाओ,
1: हाँ मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी,
0: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी दोनों मेरे क्लास में थे, और तब भी दोनों का रोमांस था, खैर वो बात और है। लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वॉज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती

0: हुई बारिश में भीगी हुई आती है और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं, घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा, उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को से लुढ़क जाती है उसकी गोद में और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, और ओह रोंगटे खड़े हो गए, क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है, इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी, फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन। हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की वी पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने, और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
1: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं।

और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के उपायुक्त को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इंटर कला संकाय की टॉपर छोटी कुमारी की पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। कसमार के खैरा चातर गांव की रहने वाली इस छात्रा को पढ़ाई के लिए आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। इधर यह मामला सामने आने के बाद डुमरी के विधायक जयराम महतो ने आज इस छात्रा को पूरे एक वर्ष की हॉस्टल फीस के रूप में 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज आगामी सावन पर्व को लेकर पहाड़ी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के इनामी नक्सली रविंद्र गंझू से पूछताछ के बाद पुलिस ने जंगल से एक AK-56 राइफल, दो मैगजीन, 90 जिंदा कारतूस, एक नक्सली पाउच बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान नक्सली ने हथियारों के गुप्त ठिकाने की सटीक जानकारी दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया और हथियार बरामद किए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित वेलायडी शीतला मंदिर के समीप एक व्यक्ति की हत्या के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र का घेराव कर प्रदर्शन किया। भारतीय सब जूनियर पुरुष और महिला टीमें कल मस्कट में आयोजित होने वाली पहली FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में अपना अभियान शुरू करेंगी। यह 6 दिवसीय यह प्रतियोगिता पहले FIH अंडर 18 यूथ हॉकी 5S विश्व कप के लिए एशियाई क्वालिफायर होगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं रोजगार एवं विकास के पथ प्रदर्शित से संबंधित कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल।

नया संकल्प नई पहल सुनने वाले सभी दोस्तों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मौसम ने अपना मिजाज बदला है, बहुत गर्मी के बाद थोड़ी राहत मिली है। दोस्तों, भारत में प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1969 में इसी दिन देश के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को आम जनता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना और देश के आर्थिक विकास को गति देना था। तो दोस्तों, हमारी बातें तो होती ही रहेंगी, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अब आइए सुनते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
2: आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कुपोषण उपचार केंद्र हजारीबाग सदर अस्पताल के डॉक्टर एस आर दांगी, जो कि कुपोषण उपचार पदाधिकारी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कुपोषित बच्चे किन्हें कहते हैं और इनके क्या लक्षण हैं, क्या उपचार है, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। तो सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्ते।
2: तो हम आपसे सीधे तौर पर जानना चाहेंगे कि कुपोषित बच्चे किन्हें कहेंगे।
3: उन बच्चों को कुपोषित हम कहते हैं जो उम्र के हिसाब से, जिनका वजन नहीं बढ़ पाता है, या उम्र के हिसाब से अनुसार जो है सो उनका लंबाई नहीं बढ़ पाती है, या फिर लंबाई ऊंचाई के अनुपात में उनका वजन बहुत कम रहता है, इन्हीं बच्चों को हम कुपोषित बच्चे कहते हैं।
2: तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुपोषण का जो लक्षण क्या होता है, कुपोषित बच्चे आपके लक्षण क्या है, उसका उपचार क्या है?
3: लक्षण में है कि जो बच्चे कुपोषित होंगे तो उनका तो वजन पहले कम होगा
2: जी,
3: जितनी रहनी चाहिए नहीं है उम्र के अनुसार, लंबाई भी कम होगी, और हम लोग लंबाई ऊंचाई के आधार पर वजन लेते हैं। तो इसमें देखा जाता है, खासकर जो हमारे केंद्र में बच्चे आते हैं, कि लंबाई के आधार पर उनका वजन सही है कि नहीं है। तो इसके लिए जो है सो अगर उन बच्चे लंबाई के आधार पर जितना वजन रहना चाहिए
2: जी,
3: और उतना वजन नहीं रह करके करीब 30% वजन अगर कम रहता है, तो उसे हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं -3 standard deviation कम
2: जी।
3: तो -3 standard deviation का मतलब मोटा मोटा ये है कि 30% वजन जो है सो स्टैंडर्ड वेट से कम होता है लंबाई के आधार पर
2: जी।
3: तो इस इन बच्चों में जो है सो उनका अपना वजन कम होने का कारण होता है कि जैसे उन्हें भोजन ठीक से नहीं मिल पाती है। अगर बच्चे माँ के दूध पर 6 महीने तक रहते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग कहते हैं, केवल माँ का दूध, तो 6 महीने तक जैसे माँ का दूध सही मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, या फिर जो ऊपरी आहार हम लोग देना शुरू करते हैं 6 महीने के बाद में, तो देर से ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं, या देर से ऊपरी आहार देने के बाद में वह भी मात्रा सही नहीं होती है, क्वालिटी उसका गुणवत्तापूर्ण नहीं रहती है। तो गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा ऊपरी आहार में नहीं मिलने के कारण भी हमारे बच्चे जो है कुपोषण के शिकार होते हैं, खासकर हमारे जो है सो 6 माह से ऊपर और 2-3 साल के बच्चे, इन लोगों में जो है सो कुपोषण काफी देखा जाता है। चूंकि हर एक हालत में माँ का दूध उतना मात्रा सफिशियंट नहीं हो पाती है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके
2: जी,
3: मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, तो ऊपरी आहार पर निर्भर करता है। तो ऊपरी आहार को होना चाहिए कि एकदम गुणवत्तापूर्ण हो, और जैसे जो हम ऊपरी आहार दें वह डेंस फूड हो, माने काफी गाढ़ा हो, ताकि बच्चे को कम मात्रा में ज्यादा उसको एनर्जी प्रदान हो सके
2: जी। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाएं हैं तो उन लोगों को क्या ऐसे सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि हमारे जो बच्चा, आने वाला बच्चा है, वो कुपोषित ना हो।
3: सबसे बड़ा इसका कारण है कि जो बच्चे, अगर जो माँ गर्भवती धारण होने जा रही है तो उसका शारीरिक विकास होना चाहिए, और जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती है, तो गर्भ धारण से लेकर के बच्चा जनन के 2 साल तक ये करीब करीब 1000 दिन होते हैं। तो इन तमाम 1000 दिनों तक अगर माँ का बढ़िया से भोजन मिले, गर्भ प्रसव होने के बाद में फिर बच्चे को बढ़िया से भोजन मिले, सभी तरह का पदार्थ उसे मिले, तो फिर यह बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट सीधा प्रभाव जो है सो आपका मानसिक विकास पर और शारीरिक विकास पर पड़ता है। तो बच्चा हमारा मानसिक और शारीरिक विकास दोनों हो, इसके लिए 2 साल तक जो है सो बच्चे को पूर्ण रूप से भोजन उसे मिले, जिसे हम लोग कम्प्लीट फूड कहते हैं, और ये कम्प्लीट फूड उसे मिलना चाहिए।
2: तो ये टीकाकरण के जो बीच में बात आती है, 9 महीने के भीतर जो है एक कार्यक्रम जो चल रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष भी चल रहा है, जिससे कि हमारे जो बीमारी से टीके वगैरह लगते हैं, तो इस टीकाकरण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
3: टीकाकरण जो है, जो बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो यहाँ पर जो ऐसे वातावरण में आता है कि चारों तरफ उसे जो है सो इन्फेक्शन मिलते हैं, तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए जैसे शुरुआती 6 महीने तक माँ के द्वारा दिया प्रदान किया हुआ हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं, उससे बच्चा सुरक्षित रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद जैसे बच्चा जैसे उसका इम्यूनिटी अपना घटने लगता है तो वो सुरक्षित नहीं होता है
2: जी।
3: तो कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो बहुत उन्हें बचाने के लिए जैसे हम लोग टीकाकरण कहते हैं, टीका करते हैं ताकि उन बीमारियों से हमारे बच्चे बच सके, या अभी कभी ग्रसित भी हो जाए तो उसमें उनका जैसे भयानक प्रकोप जैसे उस बीमारी का नहीं हो पाए।
2: हाँ।
3: तो इसके लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं। टीकाकरण करने में जैसे देखिए पोलियो हमारे यहाँ से जड़ से मिट गया, तो पोलियो का भी टीका जो है जन्म के तुरंत बाद लगता है। और बच्चों लोगों में टीबी के टीका लगाए जाते हैं जिसे हम लोग बीसीजी कहते हैं, जन्म के तुरंत बाद ही लगता है
2: जी।
3: तो इससे देने से बच्चे को जो है सो टीबी होने की शंका कम रहती है, साथ साथ अगर हो भी तो इसको गंभीर रूप धारण नहीं कर पाता है
2: जी, जी।
3: बच्चे को उसी तरह से हेपेटाइटिस बी के भी टीके लगते हैं जो कि काफी खतरनाक बीमारी लेकर के आता है। तो यह जैसे शुरुआती जन्म लेने के तुरंत बाद ही टीकों को लगा दी जाती है। 6 सप्ताह के बच्चे होने के बाद में हम लोग जैसे बच्चे को जैसे पेंटाभेलेंट टीका आता है जिसमें 5 वैक्सीन होते हैं, तो ये 5 वैक्सीन जो है सो हम लोग उसको देते हैं जब बच्चा 6ठे सप्ताह का होता है। तो वो ओपीवी के साथ में वो 5 वैक्सीन जो होता है पेंटाभेलेंट में, वह जो है सो हमारे बच्चों को काफी बीमारी से बचाता है, निमोनिया होने नहीं देता है
2: जी।
3: और उसमें हेपेटाइटिस बी के भी टीके उसमें मिले रहते हैं। 10वें सप्ताह होने के बाद में ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की जो दवा आती है सो, और इसके साथ जैसे हम लोग पेंटाभेलेंट का दूसरा डोज देते हैं। 14वें सप्ताह में जो है सो एक नया वैक्सीन आया है, नया नहीं है मतलब पोलियो का ही जो है सो इंजेक्टेबल वैक्सीन है जिसको हम लोग IPV कहते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो यह जैसे एक डोज जो है सो अभी सरकारी स्तर पर हम लोग देते हैं 14वें सप्ताह में
2: जी।
3: और उसके साथ साथ जो पेंटाभेलेंट का तीसरा डोज देते हैं, इससे हमारे बच्चे जो है सो काफी सुरक्षित हो जाते हैं। और 9 मंथ होने पर जो है सो हम लोग मिजल्स का टीका लगवाते हैं बच्चे को
2: जी।
3: और कोई कोई क्षेत्र में जैसे जापानी की इनकेफेलाइटिस का भी टीका पड़ते हैं, तो इसे मिजल के प्रकोप से बढ़ाता है। तो एक साल के अंदर यही सब टीका हम लोग देते हैं। लेकिन फिर जब 16 से 24 महीने का मेरा बच्चा होता है तो फिर वही बूस्टर डोज जो है सो हम लोग जो पहले देते चले आ रहे थे वही DPT का बूस्टर डोज हम लोग देते हैं, और मिजल्स का सेकेंड टीका हम लोग देते हैं। तो इस तरह से जैसे 16वें 14वें महीने में जो है सो बच्चे को फिर बूस्ट करने के लिए बूस्टर डोज हम लोग लगाते हैं ताकि बच्चा को और इम्यूनिटी प्रदान हो सके। ये सब टीके पड़ जाएंगे तो हम कहेंगे कि मेरा जैसे बच्चा पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया, ये संपूर्ण टीकाकरण के अंदर आता है। नहीं, टीकाकरण से तो है कि बीमारी को बचाएगा, लेकिन बच्चा जो माल नरिश जा रहा है, जो कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो उसको बीमारी होने की ज्यादा चांस रहता है। क्योंकि एक बार बच्चा कुपोषित हुआ तो उसका अपना जो है सो इम्यूनिटी जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता है घट जाती है, तो इम्यूनिटी जो है सो घट गई। अब यह है कि जब इम्यूनिटी घटेगी तो उसे जो है सो बीमारी भी प्रकोप आ जाएगा। अब यह है कि बीमारी जब बढ़ेगी तो फिर उसका जो है सो अपना जो कुपोषण है और भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसका चक्र चलते रहता है, कुपोषण बढ़ा, बीमारी बढ़ी, बीमारी बढ़ा, फिर कुपोषण बढ़ा। तो इस साइकिल में जो है सो बच्चे खींचते चक्र में चलते रहते हैं और ये बच्चे जो है सो काफी गंभीर हो जाते हैं। तो लिंग भेदभाव कभी नहीं करें, यह खाना लड़कियां नहीं खाएंगी, लड़के खाएंगे, यह खाना औरत नहीं खाएंगी, या फिर औरत लास्ट में खाएंगी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। खाना सबको लिए है, और कभी अगर स्वादिष्ट खाना बन गया तो कभी कभी पुरुष वर्ग जैसे चट कर जाते हैं और औरतों के लिए कुछ छूटता नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा भी जैसे इक्वली हो, लड़कियां लोग भी काफी आगे कर रही हैं और वे भी कर्णधार हैं, आज के सभी क्षेत्रों में आगे हैं। तो चूंकि उनका अगर मानसिक शारीरिक विकास नहीं होगा, उन्हें ठीक से भोजन नहीं मिलेगा, तो वे पिछड़ जाएंगे। इसलिए खान पान भी

0: नहीं, जैसे इक्विलिब्रियम होना चाहिए, समान समानता होनी चाहिए, उन लोगों को भी भोजन मिले। और जो भी प्रोग्राम सरकारी चलाए जा रहे हैं गर्भवती माताओं के लाभ के लिए या बच्चों के लिए, वे टीकाकरण जैसे जरूर कराएं। और जिन चर्चा मैंने थोड़े से की भोजन के बारे में, वो जैसे भोजन का जो तीन तरह के कैटेगरी करके बताया गया, ये तीन तरह का भोजन की कैटेगरी में अवश्य शामिल करें। भोजन में फल का सेवन हो, भोजन में सभी तरह का हो, दाल भी मिले, मांस मछली भी मिले, और ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ हैं, ये सब भी सेवन करें लोग। तो मैं समझता हूँ कि इसे अगर भोजन मिल जाए ना, तो फिर आपका इम्यूनिटी जैसे बढ़ेगा।
1: अभी आपके पास जितने भी लिंगानुपात की बात कर रहे थे, तो कुपोषित बच्चों में अधिकतर लड़कियां हैं या लड़के?
0: हाँ, ऐसा दिखाया था कि थोड़ा सा अनुपात जो है सो लड़कियों में ज्यादा है, और ये सभी वर्गों में है। यह नहीं कि जैसे काफी गरीब लोगों से ही कुपोषण के बच्चे आ रहे हैं, सो बात नहीं है। क्योंकि जो तरीका अगर नहीं जान पा रहे हैं खान पान का, तो फिर उनके बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं। तो अभी लेकिन संख्या थोड़ी सी, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, और अभी थोड़ा सा बीपीएल परिवार में भी इसकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। तो उन लोग से पहल करने की बात है।
1: अभी आपके स्वास्थ्य केंद्र में ही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वे जो कुपोषित बच्चे जब आपके पास आते हैं, तो कैसे परिवारों को आप अधिक सुविधा देते हैं?
0: देखिए, यहाँ जो है ना, जो बच्चे हमारे पास आए, और उसका जो है सो मापदंड है कि जैसे ये सैम बच्चे हैं कि नहीं, मैंने अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं कि नहीं है, और इसमें कुछ चिकित्सीय जटिलता है कि नहीं। इसके बाद जब मेरे मापदंड में चले आते हैं, तो उनका एडमिशन किया जाता है। एडमिशन के को माता पिता ये नहीं कराना चाहते हैं, तो उनको प्रमोट किया जाता है, वे दवा लिखा के चले जाते हैं कभी काल, तो उनको फिर बुलाया जाता है, उनका नंबर नोट किया जाता है। सही अब दीदी वगैरह अगर लेकर आती है, तो उनको घर से ही समझा बुझा कर लाती है। कुछ तो यहाँ सीधे जानकारी के हिसाब से आते हैं और बच्चे को भर्ती कराते हैं। लेकिन जैसे बच्चे जो मेरे मापदंड में यहाँ पर चले आए, उन्हें यहाँ पर पूरी सुविधा प्रदान की जाती है। किसी तरह का भी जांच की सुविधा हो, उसे यहाँ पर मुफ्त किया जाता है
1: जी।
0: अगर महिलाएं जो भी हो, अमीर घराने की हो या गरीब घराने की हो, हम लोग उसको वेज कंपनसेशन देते हैं। हालांकि पहले हम लोग 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया करते थे, लेकिन यह अभी 100 रुपया कर दिया गया है, आगे शायद बढ़ने की आशा है। तो अभी हम लोग 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जो माता यहाँ ठहरती है रात भर, तो उन्हें 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन, एक महीना तक जो भी रहती है, हर एक दिन को पैसा दिया जाता है, ताकि अपना वो काम कर सके। बच्चा का इलाज फ्री है, बच्चा का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है यूनिसेफ WHO का, उसके आधार पर हम लोग इसे भोजन देते हैं, और उसमें जो है सो विशेष तरह का भोज पदार्थ हम लोग शामिल करते हैं,
1: मुफ्त देते हैं।
0: हाँ, एकदम पूरा मुफ्त है। और बच्चे जो माताएं यहाँ पर आती हैं, उन लोग को हाइजीनिक तरीके से बताया जाता है कि घर में आप कैसे भोजन करेंगे, नाखून हाथ की सफाई क्यों जरूरी है, नाखून काटना क्यों जरूरी है, ताकि यहाँ पर होता है ना कि सिस्टम नहीं है कि हाथ धोकर के खाने का, लेकिन उससे काफी बीमारियां फैलती है। अभी देखिए, वर्ष में एक दिन स्वच्छता अभियान के तहत जैसे हाथ धुलाई का भी दिवस रखा गया है, ताकि लोग जाने कि हाथ जैसे मूवेबल पार्ट है, सब जगह छूते रहता है ना, अपना शरीर ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी है, तो उसमें गंदगी पकड़ती रहती है। हाथ कितना ही साफ हो, अगर खाने के पहले नहीं धोया जाए, तो जैसे बहुत सारे गंदगियां जो है सो उस भोजन में मिलती है, और इसी कारण से सो आपका कुछ बीमारियां, खास करके टाइफाइड वगैरह जो है, फिर दस्त वगैरह जो है, ये सब कॉमन बीमारियां जैसे होती रहती है।
1: तो डॉक्टर SR दांगी जी, आपने कुपोषण से बचाओ, इसके लक्षण, भोजन से जुड़ी बातें तथा अन्य पहलुओं पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, आपको भी।
2: दोस्तों, अभी डॉक्टर SR दांगी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जानकारी दे रहे थे, इनसे बातचीत कर रहे थे मुकेश कुमार राणा। तो इसी के साथ नया संकल्प नई पहल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। बैंक किसानों को खेती, सिंचाई, बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। इससे कृषि उत्पादन बढ़ता है और किसानों की आय में सुधार होता है। बैंक छोटे व्यापारियों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। दोस्तों, बैंक जन धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खातों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे लोगों में बचत की आदत विकसित करते हैं और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सुरक्षित एवं सरल लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सेवाओं का विस्तार गांव-गांव तक हुआ है। इससे

आर्थिक असमानता कम करने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने में सहायता मिली है। दोस्तों, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि सशक्त बैंकिंग व्यवस्था ही मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समृद्ध राष्ट्र का आधार है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल से ममता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे रोजगार एवं विकास के पथ प्रदर्शित से संबंधित कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सूचना के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम युवा तरंग।

कार्यक्रम युवा तरंग सुनने वाले सभी दोस्तों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मौसम ने अपने मिजाज बदले हैं और लोगों को राहत मिली है। संध्या के इस समय आप भी बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने रेडियो सेट के नजदीक आ जाएं, मौसम का आनंद लेते हुए हमारे प्रोग्राम का भी आनंद लें। दोस्तों, आज मोबाइल का युग है। आज के डिजिटल युग में भुगतान करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब लोग नगद पैसे की बजाय मोबाइल, इंटरनेट और बैंकिंग ऐप्स के माध्यम से भुगतान करना अधिक पसंद करते हैं। इसे डिजिटल भुगतान कहा जाता है। यह तेज, सुविधाजनक और समय बचाने वाला तरीका है। आज डिजिटल भुगतान के प्रमुख माध्यम हैं UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल और QR कोड। इनकी सहायता से घर बैठे ही बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन खरीदारी और अन्य भुगतान आसानी से किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: 21 जुलाई जन्मदिन मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का।
1: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
0: इस खास मौके पर सुनिए आकाशवाणी हजारीबाग की विशेष प्रस्तुति आदमी मुसाफिर है।
1: आदमी मुसाफिर है।
0: फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी, जो साझा करेंगे मधुर स्मृतियां अपने पिता की। इक्कीस जुलाई मंगलवार सुबह 10 बजे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आइए जानकारी सुनते हैं BSc साइंस एग्रीकल्चर में कैरियर की संभावनाएं।
5: श्रोताओं, आज के युवावाणी कार्यक्रम में हमारे बीच हैं आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग के असिस्टेंट प्रोफेसर विनीत कुमार, जो कि एग्रीकल्चर विषय से ताल्लुक रखते हैं और इस विषय में इस महाविद्यालय में HOD भी हैं। विशेष हम विनीत सर से ही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि हम अपने विषय पर बातचीत करें, विषय वस्तु पर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोताओं को दें।
6: जी नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम विनीत कुमार हुआ, मैं आईसेक विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हूँ और मेरी पढ़ाई अभी मास्टर्स मेरा पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी विषय में हुआ है। इसके पूर्व मैं आईसेक विश्वविद्यालय ज्वाइन करने के पहले मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय में था, जहाँ पे मैं एक गेस्ट लेक्चरर के तौर पर कार्यान्वित था। और मैं मेरी PhD चाइना से है, गुइजो यूनिवर्सिटी। इसके पहले मैं थाईलैंड में था। थाईलैंड में मेरी पढ़ाई और मेरा काम भी था एज अ रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट, ये था चेंगमाई यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं फिर भारत आया कोरोना होने के कारण,

0: और तब से मैं भारत में ही हूँ।
1: धन्यवाद अपने बारे में बताने के लिए हमारे श्रोताओं। विनीत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका। सर हमारा आज का जो विषय है टॉपिक है जिसे 12 के रिजल्ट निकल चुके रिजल्ट पास हो। अब 12 के बाद जो छात्र हैं जिन्होंने साइंस विषय से किया है उनके लिए एग्रीकल्चर काफी बड़ा स्कोप रखता है, बहुत सारी करियर की संभावनाएं भी।
2: हाँ सर, तो हमारा जो पहला प्रश्न है आपसे वो है कि एग्रीकल्चर का कोर्स क्या है और कौन से विद्यार्थी इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, इसके बारे में।
0: जी धन्यवाद सर आपके प्रश्न के लिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर और मार्गदर्शन देने का मौका मिल रहा है। सो मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं जिनका बैकग्राउंड और जिनका स्ट्रीम साइंस से रहा है, विज्ञान ISC या +2 अगर उन्होंने विज्ञान से किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि उनका बायोलॉजी था या नहीं था। हमारी पढ़ाई उतनी कठिन नहीं होती एग्रीकल्चर की कि अगर किसी का बायोलॉजी भी नहीं है, जीव विज्ञान भी उसके सब्जेक्ट नहीं है तो वो ना पढ़ पाए, तो ये उसके लिए काफ़ी आसान रहता है।
1: अच्छा,
0: तो मैं वही संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जिसका विज्ञान था या विज्ञान है अभी क्लास 12th में, वो लोग दाखिला ले सकते हैं हमारे पास और एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स 4 साल का है, 4 साल में मतलब 8 सेमेस्टर्स होते हैं और 7वें सेमेस्टर से हम अपने बच्चों को प्रोजेक्ट के लिए बाहर भेज देते हैं जिससे कि उन्हें प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज है वो उन्हें मिल पाए। और फिर 7वें सेमेस्टर में 6 महीना जब वो बाहर रह जाते हैं फिर उन कोई ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद जब हमारे पास आते हैं तो वो एक वेल ट्रेन और स्किल्ड आप कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी हो जाते हैं
1: जी।
0: और फिर 8वें सेमेस्टर में हम लोग फिर से 2 प्रोजेक्ट करवाते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम एक होता है हमारे पास में जिसमें कि हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे, मान लीजिए कि अब हमारे पास ज़्यादा पैदावार हो गया किसी भी फसल का, उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास टमाटर या आज आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत
1: जी बिल्कुल,
0: तो अगर वो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाए मार्केट में उसे कोई खरीदने वाला ना हो तो हम उसे फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में बेच सकते हैं या हम खुद की कंपनी वैसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं या बना सकते हैं जिसमें कि हम उस खाने को या जो हमारा फसल था स्ट्रॉबेरी जो हमने उदाहरण लिया उसे हम लोग उसके बिस्किट्स बना सकते हैं या उसको हम लोग जैम बना सकते हैं। अगर एप्पल हमारे पास है तो उसका जैम एंड जेली का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी पे ही हमारा यहाँ काम होता है
1: बहुत को। अच्छा, अब एक बात बताएंगे कि प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं जहाँ से एग्रीकल्चर में स्नातक और मास्टर डिग्री हासिल की जा सकती है।
0: जी बिल्कुल, तो मैं तो शुरुआत करूंगा भारत के सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय से, जीबी पंत। तो ये भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे भी आपको BSc और MSc की डिग्रीज मिल जाती है स्नातक और स्नातकोत्तर की। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे अगर झारखंड, ये आपका उत्तराखंड में जी पंत नगर जीबी पंत। तो उसके अलावा आप हमारे झारखंड में अगर देखेंगे तो ये भी हमारे पास है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि कांके में है, ये भी काफ़ी विख्यात है अपने रिसर्च के लिए और जिस तरह की यहाँ पे पढ़ाई की दी जाती है बच्चों को वो। और फिर देहरादून में भी कई सारे विश्वविद्यालय हैं और अगर आप UP में देखें, हमारे बिहार में भी देखेंगे तो वहाँ भी कई सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है।
1: बहुत सारे विकल्प हैं,
0: बहुत सारे बच्चों के पास कई सारे विकल्प हैं। और मैं तो बोलूंगा, मैं खुद बायोटेक्नोलॉजी मेरा बैकग्राउंड रहा है तो जब से मैं एग्रीकल्चर में आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में अगर भारत की बात की जाए तो एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चे अगर मायूस भी हो रहे हैं कि वो मेडिकल नहीं निकाल पाए हैं या वो इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है कि वो अपना स्ट्रीम चेंज करके एग्रीकल्चर में आ जाए जिसमें कि भारत में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है अभी। और आप देखोगे कि अगर आप टेक्नोलॉजी, अगर प्रौद्योगिकी अगर भारत में बहुत ज़्यादा उन्नति के दौर पे है लेकिन अगर वो खाएंगे नहीं, अगर वो उपज ही नहीं कर पाएंगे तो वो क्या ही कमाएंगे। अगर मान लीजिए कि पैकेज किसी का बहुत ज़्यादा हो गया और उतना उपज ही, वो फसल के दाम आजकल देख सकते हो आपके बहुत महंगे होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई अभी मैं तो बताऊँगा कि ये बहुत अभी ज़्यादा इसका डिमांड रहने वाला है और डिमांड है भी आज भारत में।
1: अच्छा, नई शिक्षा नीति में जैसे आपने कहा डिमांड तो है, उपयोगिता है, तो इसकी उपयोगिता को किस रूप में देखते हैं
0: सर? नई शिक्षा नीति में अगर जैसे हम लोग नई शिक्षा नीति में हम लोग जैसे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया है।
1: अच्छा,
0: है ना? तो हम लोग जो जैसे जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं

0: बच्चों को, तो हम लोग उसको स्किल्ड बनाते हैं। आज शिक्षा तो थ्योरी के तौर पे कहीं भी मिल जाएगी आपको, वो इंटरनेट में भी उपलब्ध हो जाती है, आप घर बैठ के भी वो शिक्षा आपको मिल जाएगी। लेकिन जो स्किल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, फील्ड में ले जाना, जो मैंने आपको बताया सातवें सेमेस्टर में जैसे बच्चों को बाहर भेजा जाता है, तो उन्हें काफी ज्यादा ट्रेन किया जाता है। जो तो उस जगह पे बोले, जैसे कुछ बच्चे हमारे देवघर में गए थे, तो जो स्किल, जो कुछ कुछ चीज हम लोग, सारी चीजें तो अभी आईसेक यूनिवर्सिटी नई नई बनी है, तो वो सारी फैसिलिटीज और वो सारी चीजें या संसाधन हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन जितना भी हम लोग दे पाते हैं, लेकिन अगर कुछ बच भी रहा है तो वो उसके लिए हम लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो मैं तो बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति से हम लोग बच्चों को स्किल यहाँ पे बहुत प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण वो कहीं भी जाए तो वो हमारा तो नाम रोशन करे ही करे, झारखंड का भी नाम रोशन करे।
1: जो ये डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो इस डिग्री के बाद, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर रोजगार की संभावनाएं युवाओं के लिए मौजूद होती
0: है? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद अगर हम किसी मध्यम वर्ग परिवार से आ रहे हैं, तो हमारे माता पिता के दिमाग में यही रहता है कि अगर मैं अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराऊं तो चार साल के बाद उसे वो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैकेज कितना रहेगा, अगर वो डॉक्टर भी बन रहा है तो कितना दूर जाएगा। तो ये सवाल काफी जरूरी था। तो एग्रीकल्चर करने के बाद हमारे भारत में बहुत सारी नौकरियां हैं, तो उसकी जानकारी मैं थोड़ी सी आपसे साझा करूंगा। तो सबसे पहला तो मैं बताऊंगा आपको, एग्रीकल्चर एनालिस्ट का एक जॉब लग सकता है, जिसमें पैकेज आपका 4 लाख से 6 लाख प्रतिवर्ष ये रहता
1: है,
0: सालाना। जी बिल्कुल। उसके बाद कई सारे सेक्टर्स में और कई सारे जगहों में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की बहुत डिमांड होती है, ठीक है। जैसे आप बैंकों में भी देखेंगे तो वहां पे एक पोस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का रहता ही रहता है, जिसकी नियुक्ति कई सारे परीक्षाओं के द्वारा होती है। इसमें पैकेज की जहां तक बात की जाए तो पैकेज बहुत ही अच्छा है। अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद इसकी तैयारी करते हैं तो वहां पे 9 लाख से 14 लाख रुपए तक का सालाना इतना नौकरी लग सकता है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मार्केटिंग का बहुत अच्छा है, उन्हें नॉलेज रहता है और वो टैलेंटेड रहते हैं, वो बॉर्न उन लोगों प्रतिभा रहती है कि वो बचपन से मार्केटिंग, उनके लिए बेचना कुछ भी बहुत आसान है, तो मार्केटिंग लाइन भी इसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वहां पे बनाया जाता है, जिसमें कि शुरुआती पैकेज तो मैं बताऊंगा कि थोड़ा कम है, जैसे 3 लाख से शुरू होता है वो, फिर जाके 6 लाख तक मैक्सिमम जाएगा। लेकिन
1: स्टैंड होने के लिए,
0: हाँ स्टैंड होने के लिए, और इसमें क्या होते हैं ना, आपको इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे आप एक टारगेट आपको मिल रहा है, आप वो टारगेट पूरा कर लेंगे तो आपको उसका एक बोनस भी मिलेगा, तो मार्केटिंग लाइन में जा सकते हैं। इसके बाद अगर कई सारे बच्चों को रुझान होता है कि वो साइंटिस्ट बने, जैसे मैं अपनी बात भी बताऊंगा कि मुझे वैज्ञानिक बनने का बहुत ही इच्छा है, तो आगे जाकर मैं वैज्ञानिक भी बन सकता हूँ यहाँ से।
1: चलिए, शुभकामनाएं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें ICAR इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं भारत में, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जितने भी इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, तो उसमें ICAR साइंटिस्ट का बहुत सारा पोजिशन होता है। तो इसमें मैं पैकेज तो नहीं बताना चाहूंगा कि कितना होता है, बिकॉज कारण यही है पैकेज नहीं बताने का, पैकेज हालांकि बहुत अच्छा है यहाँ पे, उसके मन में जो इच्छा होती है कि हाँ उसे कुछ खोजने की जो एक ललक होती है ना, तो वो बच्चों में वो एक पता चल जाता है। तो एक ICAR साइंटिस्ट का भी है, जिसमें कई सारे पोजीशंस होते हैं, ए से लेकर काफी ई तक होते हैं, मतलब आप पोजीशंस वो प्रमोशंस होते होते बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर वो MSc कर लेते हैं एग्रीकल्चर से ही, तो उसके बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप होते हैं कई सारे ICAR इंस्टीट्यूट्स में भी, जहाँ पे उन्हें महीने के 32,000 रुपए मिल सकते हैं शुरुआती, और बाद में जाके 38,000 रुपए SRF बनने के बाद। तो इतने सारे हैं और भी बहुत सारी चीजें, रिसर्च असिस्टेंट है, जैसे कि मैं जब थाईलैंड में था तो मैं एक रिसर्च असिस्टेंट ही था वहाँ के फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में, तो एक रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर भी वो रह सकते हैं। तो कई सारे सीड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, संभावनाएं अनंत है, मैं ये असीमित है यहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर भारत में, एक तो भारत एक कृषि प्रधान देश
1: है, बिल्कुल,
0: तो इस कारण से भारत में कई सारे मतलब संभावनाएं बहुत है एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो।
1: आपने कहा फूड प्रोसेसिंग, तो बिल्कुल सारे जॉब आए।
0: हाँ, जैसे आप देख लेंगे अभी, जैसे बिस्किट्स में काजू आते हैं, तो वो काजू कहाँ से आ रहा है?
1: जी बिल्कुल,
0: उसको भी प्रोसेस करने के बाद आपको वो एग्रीकल्चर की दे रहे हैं,
1: तो वहाँ भी ढेर सारे नौकरियाँ मौजूद है।
0: बिल्कुल, बहुत सारे। हाँ जी बिल्कुल
1: ठीक है। अच्छा, अब अंत में हम ये हमारे ये श्रोता जानना चाहेंगे, जिज्ञासा होगी कि चलिए इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पढ़ना

0: होता है उसके बारे में थोड़ा
1: सिलेबस को मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा क्योंकि सिलेबस तो बहुत वृहद है
0: जी,
1: आठों सेमेस्टर में इसकी पढ़ाई होती है, तो मैं संक्षेप में शुरुआत करूंगा। तो पहले सेमेस्टर में जैसे बच्चे नए नए आते हैं तो उन्हें बेसिक जो चीजें होती है, जो नॉर्मल चीजें होती है एग्रीकल्चर की, उससे हम लोग रूबरू कराते हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो उसमें जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, और प्लांट पैथोजन हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया सॉरी, और हॉर्टिकल्चर, इकोनॉमिक्स में की भी पढ़ाई होती है हमारे पास में, सोयल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। ये फर्स्ट, मैं फर्स्ट ईयर की ही बात बता रहा हूँ। तो इनमें ये सब मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, मुख्य विषय हैं इसके। अब यहाँ से हम लोग सेकेंड ईयर की बात करते हैं,
0: सेमेस्टर,
1: हाँ ये सेमेस्टर, और मैं साल की मैं बात बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो चार साल का कोर्स है, तो पहले साल में आपको ये सब बेसिक नॉलेज आपको सारा लेना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में जैसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेट होता है क्योंकि आपको अब एक प्रोफेशनल बनाया जा रहा है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के आप मतलब मान के चलिए कि आप सबसे ज्यादा जानकार हो। तो इसमें आपको नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप जियो टेक्नोलॉजी, आप सेकेंड ईयर में जैसे बच्चे आते हैं तो उन्हें अब टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अब प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से, मैं कहूंगा कि थोड़े से जटिल हो जाते हैं, और हम लोग अपना पूरा कोशिश भी करते हैं, हम सारे शिक्षक जो है वहां पे, कि बच्चों को वो जितनी आसान से आसान भाषा में, आसान से आसान तरीके से समझाएं। तो इसमें सब्जेक्ट में बताऊंगा तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आ जाता है, और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के भी बारे में हम लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। जैसे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, जैसे एक हो गया आपका ट्यूलिप का या ऑर्किड का जो एक फ्लावर होता है जिसे हम लोग सजावट में मोस्टली यूज करते हैं, हॉर्टिकल्चर का भी इसको हम लोग थोड़ा सा एक विंग कह सकते हैं आप, फिर रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे की भी पढ़ाई होती है, जिसकी जिसको मैं पढ़ाता हूँ अपने विश्वविद्यालय में। फिर प्रॉब्लमेटिक सोयल जितने भी हैं, तो मृदा से जितने संबंधित प्रॉब्लम्स आते हैं सोयल से, तो उन सबको भी हमारे जो डीन है वो पढ़ाते हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार। और इसके बाद सीड टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई होती है हमारे पास में। इसके बाद अब जो एक काफी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि जैसे मार्केटिंग के जो मैं बच्चों की बात बता रहा था, तो एक सब्जेक्ट अब हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेकेंड ईयर में ही, जिसका नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस। तो ये आपको एक बेसिक ज्ञान दे देता है कि बच्चों को किस टाइप से मार्केट को स्टडी करना है, क्योंकि इवेंचुअली लास्ट में हम लोगों को क्या करना है कि अपना जो प्रोड्यूस है, जो भी प्रोडक्ट आता है, उसको हमको मार्केट में बेचना है। और एक और सब्जेक्ट को जो मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे, वो है बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर।
0: अच्छा जी,
1: जो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, आज कहीं भी आप जाएंगे तो मान लीजिए कि कोई एक आम किसान जिसके पास लैंड होल्डिंग उतना नहीं है, बट वो कुछ कमाना चाहता है, तो वो अपने घर के पीछे भी एक गड्ढा खोद करके वहाँ पे आप बायो फर्टिलाइजर एक, या फिर वर्मी कंपोस्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो आप लोग वहाँ पे बना सकते हैं काफी कम दाम में, ये अच्छा खासा, और ये काफी न्यूट्रिशियस भी होता है सॉइल के लिए। तो ये सब सारे सब्जेक्ट है। अब थर्ड ईयर में अगर हम लोग जैसे आते हैं तो इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन है, और ऐसे सब्जेक्ट काफी ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। रेन फेड कल्चर है यहाँ पे, कि जैसे झारखंड जैसा एक हम लोग का भूमि है, तो यहाँ पे पानी उतना उपलब्ध नहीं रहता है। देखा गया है कि ये थोड़ा सा ड्राई ही आप इसको मान के चले कि यहाँ का जो मौसम है, तो हम लोग वर्षा ऋतु पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, आश्रित रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे बारिश होती है हम लोग अपना उस समय खेती करते हैं। तो हम लोग का जो एग्रीकल्चर है यहाँ पे, ये रेन फेड एग्रीकल्चर
0: के शिक्षक है, और बहुत अच्छी जानकारी हमने इनसे प्राप्त की है कि एग्रीकल्चर में करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं। 12th के बाद अब इसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, खासतौर से उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं करियर की, ये वो जो साइंस से आते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विनीत कुमार से ये जानकारी, बीएससी साइंस एग्रीकल्चर में करियर, इनसे बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार। इतनी अच्छी जानकारी के बाद आइए सुनवाते हैं एक बढ़िया सा गीत।

दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं डिजिटल भुगतान और सुरक्षित लेन देन की। दोस्तों डिजिटल भुगतान के साथ सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। सुरक्षित लेन देन से हमारी बैंक संबंधी जानकारी और धन सुरक्षित रहता है तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव होता है। दोस्तों सुरक्षित लेन देन के कुछ उपाय हैं जिनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अपना UPI पिन, OTP और पासवर्ड किसी के साथ कभी साझा न करें। केवल विश्वसनीय वेबसाइट और मोबाइल ऐप का ही उपयोग करें। संदिग्ध लिंक या संदेशों पर कभी भी क्लिक न करें। भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम और विवरण अवश्य जांचें। मोबाइल और बैंकिंग ऐप को नियमित रूप से अपडेट रखें। किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत बैंक को सूचित करें। दोस्तों डिजिटल भुगतान ने हमारे जीवन को सरल और तेज बना दिया है। यदि हम सावधानी और सुरक्षा के नियमों का पालन करें तो डिजिटल लेन देन पूरी तरह सुरक्षित और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का सही और सुरक्षित उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम युवा तरंग से ममता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचना के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम युवा तरंग, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। अब सिर्फ कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के उपायुक्त को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इंटर कला संकाय की टॉपर छोटी कुमारी की पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। कसमार के खैरा चातर गांव की रहने वाली इस छात्रा को पढ़ाई के लिए आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरायकेला मंडल कारा का आज संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह, उपायुक्त नीतीश कुमार और पुलिस अधीक्षक मनोज स्वारगिरी समेत अधिकारियों ने रसोई घर, बंदी वार्डों, अभिलेखों और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान बंदियों को उनके विधिक अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी भी दी गयी। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने आज जमशेदपुर पश्चिमी और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदान केंद्रों का दौरा किया। मतदाताओं की सुविधा के लिए 18 और 20 जुलाई को सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष सहायता शिविर लगाए जा रहे हैं। इधर राज्य नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता ने झरिया विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटलीकरण का निरीक्षण किया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज आगामी सावन पर्व को लेकर पहाड़ी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गढ़वा जिले के भंडरिया बड़गढ़ मुख्य मार्ग स्थित सालो जंगल में आज सुबह अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। खूंटी जिले के तोरपा मुख्य मार्ग स्थित दो दुकानों से बीती रात करीब 10 लाख रूपये के आभूषण और नकद की चोरी कर ली गयी। घटना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने दुकान में लगे कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रमिक बंधुओं को संबोधित कार्यक्रम मेहनतकश।

कार्यक्रम मेहनत कर सुन रहे सभी श्रमिक बंधुओं को परमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार। श्रमिक भाइयों, आप सभी कैसे हैं? ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप

0: सभी अपने अपने कार्यों को सभी जो है सही तरीके से कर रहे होंगे। श्रमिक भाई, ये तो हम सभी जानते हैं कि श्रम जीवन की नींव है। यह आत्मसम्मान, अनुशासन और प्रगति लाता है, क्योंकि ईमानदार मेहनत से जो है आत्मविश्वास बढ़ती है, जीवन को मजबूत यह बनाती है और जिम्मेवारी सिखाती है। श्रम से कौशल निखरता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है और सपने हकीकत बनते हैं। लगातार प्रयास से श्रमिक बंधु आदमी जीवन में सफल होता है। और अब समय हो चला एक प्यारे से गीत का, तो हम जानकारी की बातें आपसे साझा करेंगे और भी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। लेकिन इस गीत से पहले कुछ जरूरी संदेश भी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
6: Yes.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: समीक भैया, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज जानेंगे कि कार्यस्थल पर सुरक्षा और दुर्घटना से बचाव कैसे की जाए। श्रमिक भाइयों, अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा के मानकों और नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप किसी कारखानों में काम कर रहे हैं तो वहां हेलमेट, जूते, दस्ताने पहनना आवश्यक है और अगर आवश्यक है तो उसे पहने। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि वहां अग्निशामक की व्यवस्था हो है या नहीं, यह सुनिश्चित करें। कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संभावित खतरों की पहचान करना अति आवश्यक है। साथ ही नियमित जोखिम का मूल्यांकन करना भी होगा और प्रभावी घटना निवारण रणनीतियों का विकास करना महत्वपूर्ण कदम है। मजबूत सुरक्षा नीतियां स्थापित करना और साथ ही प्रशिक्षण उन्हें प्रदान करना, सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना और कार्यक्षेत्र को साफ रखना भी शामिल है। संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाओं को का हमेशा पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत उपकरण पहने, खतरों की तुरंत सूचना दे, उपकरण का सही उपयोग करें, आपातकालीन प्रक्रियाओं को जाने, शॉर्टकट कभी ना अपनाए, उचित कपड़े पहने और सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा दे। अगर हम इस तरह के नियमों का पालन करेंगे तो कार्यस्थल पर हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। और हम आज इस कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं एक भेंटवार्ता। विषय है ट्रंक, ड्रम और अलमारी निर्माण व्यवसाय स्वरोजगार का बढ़िया जरिया। भेंटवार्ताकार हैं कपिल देव विश्वकर्मा और इनसे बातें कर रहे हैं सूरज रजक।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करा रहे हैं जिन्होंने शुरुआत तो छोटी की लेकिन पहचान बड़ी बनाई है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है कपिल देव विश्वकर्मा जी। ट्रंक है, ड्रम है और अलमीरा का व्यवसाय करते हैं। पारंपरिक व्यवसाय है, परिवार का व्यवसाय है, लेकिन उन्होंने इसे एक बड़ी पहचान बनाई है। आइए आज जानते हैं इस व्यवसाय के बारे में, इनके जीवन की सफलताएं, संघर्ष के बारे में कि आज वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। तो कपिल देव जी, आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: तो सबसे पहले ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि इसकी शुरुआत आप कब से किए हैं?
2: ये तो शुरुआत हम लोग बहुत छोटा से ही कर रहे हैं। हमारे बाबू जी जो है बहुत छोटे में गुजर गए थे तो हम लोगों को तकलीफ हो गया, तो उस समय से हम लोग ये व्यवसाय में लगे हुए हैं।
1: कितना वर्ष हुआ होगा जब आप इस काम में शामिल हुए?
2: तो हम तो मतलब 10 वर्ष से इसमें लगे हुए हैं। 10 वर्ष का उम्र से?
1: ओ, 10 वर्ष की उम्र से
2: जी।
1: तो कम से कम हमको लगता है कि 30-35 साल का सफर
2: रहा होगा। हाँ सर।
1: तो उस समय जो आपका ये वर्कशॉप था और आज है, उसमें क्या अंतर आता
2: है? पहले तो ऐसा वर्कशॉप नहीं था, अब जो है सो ये तो मतलब हमारे बाबूजी का जमीन था, दादा का, तो उसी पर हम लोग को बनाए हैं घर और इसी में दुकान किए हैं।
1: तो अभी क्या क्या बनाते हैं आप लोग?
2: अभी तो हम गोदरेज, अलमीरा, ट्रंक और ड्रम वगैरह बनाते हैं।
1: बक्सा वगैरह भी?
2: हाँ, बक्सा वगैरह, ट्रंक वगैरह सब बनाते हैं जी।
1: और मतलब जैसे कि इस तरह का जब व्यवसाय है तो आपका यहाँ व्यवसाय है और हजारीबाग में और सारा व्यवसाय है, तो क्या अंतर है जैसे ग्राहक महसूस करे कि क्या विशेष देते हैं?
2: हम विशेष यही देते हैं कि हम जो है जो भी चीज बनाते हैं ठोस चीज बनाते हैं, ठीक है। वो हम लोग ग्राहक को ठगने वाला सामान नहीं बनाते हैं, जो भी चीज है बढ़िया है। ट्रंक भी जो है सो भी मजबूत हम लोग बनाते हैं, बाजार से हम लोग हटकर बनाते हैं।
1: मतलब जैसे कि आमतौर पर जैसे जो कोई ग्राहक आता है आपके पास तो उनके पास इस चीज का अनुभव नहीं होता है कि इसकी क्वालिटी क्या है
2: जी।
1: तो इसको ग्राहक को कैसे समझाते हैं आप?
2: तो वो तो ग्राहक को बताना पड़ता है, समझे ना। अब वो जो है सो अगर समझे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या उसमें, ऐसे तो चदरा मोटा पतला हम लोग सब दिखलाते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं 22 गेज सीट में, बाजार में जैसे 24 गेज, 26 गेज, अब वो 26 गेज सीट को उन लोग बोल देता है 20 गेज, तो कस्टमर को पता चले तब ना कि 20 गेज कितना मोटा होता है, 22 गेज कितना मोटा होता है। तो वो आकर बोलते हैं कि नहीं हमको तो 20 गेज का दे रही है, इतना ही वो दे रही है।
1: मतलब इस चीज को समझ
2: नहीं होता है, इसीलिए ठगा भी जाते हैं बाजार में।
1: अच्छा, जैसे इसके लिए किस तरह के रॉ मटेरियल आप लोग इस्तेमाल करते हैं?
2: हम लोग सब टाटा सीट इस्तेमाल करते हैं।
1: तो कहाँ से उपलब्ध होता है आपको?
2: हम लोग तो मतलब यहीं से लोकल ही उठा लेते हैं।
1: लोकल
2: जी,
1: करते हैं
2: जी।
1: और जैसे कि एक अलमीरा है, तो इस तरह का अभी जैसे डिजाइन वगैरह में बहुत सारा परिवर्तन आया है, तो क्या क्या बदले हैं आप लोग
2: उसमें? लॉकर के अंदर में जो चेंजिंग होता है वही सर,
1: बाकी वही पारंपरिक।
2: हाँ, पारंपरिक टाइप का जो बनता है उसी तरह का है, लेकिन अंदर में अभी के समय में जैसे स्टाइल वगैरह थोड़ा चेंज हो गया है।
1: लॉकर वगैरह भी?
2: हाँ, लॉकर वगैरह में भी परिवर्तन है।
1: तो आप बता रहे हैं कि 30-35 साल आपका इस व्यवसाय में हो चुका है, तो शुरुआत में ये सारी चीजें थी कि उसमें कुछ अंतर था?
2: नहीं, उस समय इतना नहीं था।
1: तो मतलब उस समय क्या बनाते थे?
2: उस समय भी हम लोग गर्म काम करते थे, तो उसको फिर हम लोग चेंज करके फिर हम लोग ये काम करने लगे।
1: पहले गर्म काम?
2: हाँ, पहले गर्म काम करते थे।
1: तो गर्म काम करने से मतलब क्या?
2: जैसे कि मतलब सिकड़ी हो गया, पहले बाजार में वही सब चलता था, पारंपरिक जो हम लोगों का जो पैसा था वही हम लोग करते थे।
1: खुद करते थे
2: जी?
1: मतलब उसके बाद यहाँ?
2: उसके बाद फिर जो है हम लोग थोड़ा सा अपना चेंजिंग किए, तब फिर हम लोग जैसे अलमारी बक्सा ये सब बनाना शुरू किए।
1: आज देखिए आपके वर्कशॉप में भी कितने लोग काम कर रहे हैं, तो कितने लोग आज आप काम करते हैं?
2: हमारे वर्कशॉप में अभी 3 जन काम कर रहे हैं, एक बक्सा मिस्त्री है, एक अलमारी मिस्त्री है और एक पेंटर है।
1: मतलब 3 अलग अलग काम करने के लिए 3 अलग अलग
2: जी
1: लेबर है
2: जी, और हम खुद से अपना काम करते हैं।
1: आप खुद भी अपना काम करते हैं, क्योंकि आप तो शुरुआत से गर्म काम कर रहे थे उस समय से, आपका ये अनुभव है। अच्छा, जैसे कोई एक व्यवसाय होता है तो उसमें परिवार के लोगों का भी सहयोग के बिना तो व्यवसाय सफल नहीं हो पाता है, आगे संभव नहीं हो पाता है, तो परिवार के लोगों को कितना आपका सहयोग मिल पाता है?
2: परिवार से अभी बच्चे लोग थोड़ा बड़ा हो गए तो लोग सहयोग करते हैं।
1: हाँ,
2: एक लड़का हमारा एडवोकेट है, अब कोर्ट से आने के बाद जो है सो हम
1: हमारे पास आए। तो मतलब परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग मिलता है
2: जी जी।
1: और जैसे कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसकी अपनी चुनौतियां हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं, तो किस तरह के समस्याओं का सामना करते हुए आप यहाँ तक आए हैं, इस बारे में कुछ बताइए।
2: मतलब हम तो पढ़ाई भी किए और पढ़ाई करने के साथ साथ हम ये व्यवसाय में भी आए हैं।
1: पढ़ाई करने के साथ साथ तो शुरू में कितना समय देते थे, जैसे जब पिताजी थे जब काम करते थे उस समय?
2: तो हम पिताजी तो हमारे बहुत छोटे में ही गुजर गए थे, समझे ना, तो हमारी माँ थी, वो माँ भी हमको बहुत कोऑपरेट की। माँ भी अभी गुजर गई हैं, तो अभी बच्चा लोग है वो लोग कोऑपरेट करता है।
1: और जैसे कि बाजार की बात करते हैं तो बाजार कहाँ कहाँ है, इसका मतलब आप बेचते कहाँ है इसको?
2: बेचते तो यही पर से है,
1: आपके ग्राहक कहाँ कहाँ है?
2: ग्राहक तो मतलब बहुत जगह है, जो भी एक बार सामान ले गए तो हमारे ग्राहक बन जाते
1: हैं।
2: हजारीबाग से बाहर भी है,
1: जैसे
2: आपका चतरा हो गया, फिर आपका इधर बिशुनगढ़ हो गया, फिर आपका बड़का गांव हो गया, इधर से लोग आते हैं और सब ले जाते हैं।
1: अच्छा, जैसे कि आपका ये वर्कशॉप देखकर, आपका काम देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत एक स्किल की जरूरत होती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं एमबीए करके आए और इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप पारंपरिक रूप से कर रहे हैं और इतना बेहतर कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं?
2: इसके पीछे का कारण क्या मतलब वही है कि हम लोग अपना मेहनत से आगे बढ़े हैं।
1: हाँ, जैसे कहते हैं कि किसी व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई चीजों को उसमें अपनाना है, तो आप उन चीजों को अपनाए हैं अपने व्यवसाय में?
2: हाँ, नया चीज भी अपनाया है बहुत सारा चीज।
1: और जैसे कि कोई इस व्यवसाय को करना चाहता है, जैसे कोई युवा है, तो उसको क्या आप सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से व्यवसाय में आगे बढ़ सकता है?
2: नहीं, व्यवसाय करने में ठीक है, कोई वैसा बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगता है, समझे, कम पूंजी में भी अगर अपने से अगर वो जानते हैं तो बहुत अच्छा है, समझे ना। हम तो अपना मतलब हमारे वर्कशॉप से 3-4 मतलब स्टाफ जो को हम सिखाए हैं, वो लोग अपना अपना धंधा कर रहा है, बहुत अच्छा है। उन लोग
1: मतलब आपके यहाँ से सीखे, उसके बाद वो व्यवसाय करते हैं?
2: एक चतरा में जाकर दुकान किया है, एक गुमला में है, एक हजारीबाग में ही पिलावल में अपना काम कर रहा है।
1: मतलब ये भी आपके उपलब्धि भी आपके?
2: हाँ।
1: और जैसे कोई व्यक्ति, कोई नया लड़का है या कोई नया इस व्यवसाय में आना चाहता है,
2: हाँ,
1: तो वो कैसे कर सकता है इसको?
2: हाँ, वो आने के लिए अगर चाहता है तो हम उसको, अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको सिखलाएंगे।
1: नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं बाहर दूर दराज का, जैसे रेडियो में कोई कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो जो आपके साथ आपके पास नहीं आ सकते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: हम तो यही सलाह देंगे कि कम पूंजी में अच्छा बिजनेस है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप अपने से करते हैं तो मतलब आपका लेबर चार्ज भी आपके पास ही रह जाता है।
1: मतलब अगर खुद से काम अगर आता है तो उसमें मतलब लागत भी कम,
2: हाँ,
1: मुनाफा उसका ज्यादा,
2: हाँ, ज्यादा होगा।
1: कपिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी व्यवसाय के लिए पूंजी एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो पूंजी के लिए फिर आगे जब व्यवसाय बढ़ता है तो उसके लिए और ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, तो इसके लिए बैंक वगैरह से भी लोन वगैरह की सुविधाएं मिलती है, तो आप इस तरह का ऋण वगैरह लिए हैं तो उस बारे में कुछ बताइए।
2: नहीं, बैंक से तो लोन नहीं लिए हैं, लेकिन हम इसी से पूंजी बढ़ाकर जो है हम अपना काम कर रहे हैं।
1: मतलब इसी से पूंजी बढ़ा करके काम कर रहे हैं। और जैसे देखिए कि बहुत सारे आपके यहाँ जैसे ट्रंक है, ड्रम है, तो सबसे ज्यादा आपके यहाँ की बिक्री किस चीज में है?
2: सब चीज थोड़ा थोड़ा बिकता है सर,
1: मतलब मिला जुला,
2: हाँ, जैसे अलमारी भी बिक गया, ट्रंक भी बिक गया, कोई ड्राम का जरूरत हुआ तो ड्राम भी ले गए, तो इस तरह से बिक जाता है।
1: अच्छा, एक व्यवसायी का सपना होता है कि वो और आगे बढ़े, कुछ और बेहतर हो उसकी जिंदगी में, तो आपके पास भी तो कोई सोच होगी कि और इसको यहाँ तक ले जाना है?
2: हाँ, वो तो है, तो अब तो हम तो मतलब अब जो कर रहे हैं वो तो ये हो गया, अब तो हमारा लड़का लोग है, अगर वो लोग चाहे तो ले जा सकते है।
1: जैसे कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं, किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं?
2: तो इसके लिए तो मतलब अगर इसी में जुटने से तो आप मतलब बड़ा व्यवसाय भी कर सकते हैं इसमें, और जैसे कि होलसेलर वगैरह भी कर सकते हैं, किन्हीं को जैसे अलमारी है वो हम लोग दे सकते हैं, उन लोग भी अपना बेचकर मुनाफा कमाते हैं लोग,
1: मतलब कि होलसेल के काम में इससे आगे बढ़ा जा सकता
2: जी,
1: है।
2: जी,
1: तो जैसे देखिए बाहर में जैसे महानगरों की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों की चीजें, या कहे कि ब्रांडेड हो गैर ब्रांडेड हो, तो बड़ी इस तरह की चीजें हजारीबाग के बाजार में भी है,
2: तो भी है।
1: हाँ, तो बाहर से जो चीजें आती हैं, तो क्या यहाँ से ये सारी चीजें संभव नहीं है?
2: नहीं, यहाँ से भी संभव है, समझे ना, लेकिन है क्या कि आदमी उतना करने लायक, उसमें जो है सो बड़ा पूंजी का जरूरत पड़ता है, जैसे उसमें बड़ा बड़ा मशीन का भी जरूरत पड़ता है, तो हम लोग उतना बड़ा मशीन नहीं लगा सकते, इसी के चलते हम लोग हाथ से ही ये सब काम कर लेते हैं।
1: बड़े मशीन की बात करें तो किस तरह के मशीन का उपयोग होता है?
2: वो बेंड मशीन हो गया, उसमें फिर आपका स्पॉट वेल्डिंग हो गया, ये सब का जरूरत पड़ता है, रंग करने का बड़ा मशीन होता है, वो सब जरूरत पड़ता है।
1: मतलब बड़े पैमाने पर करने के लिए मशीनें हैं?
2: मशीनें हैं,
1: मशीनें हैं
2: जी।
1: तो वो सारी चीजें बाजार में है, उसको लाकर किया जाए?
2: बाजार में है, लेकिन हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है और उतना जगह भी नहीं है जो कि हम लोग उतना बड़ा पैमाने पर कर सके,
1: लेकिन संभव है, इस दिशा में आगे बढ़ा बढ़ा जा सकता है। तो आप जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं कि इस व्यवसाय में आएंगे तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, वहीं से बात बताइए।
2: तो असल बात है क्या, देखिए हमारे बच्चे जो है सो दो लड़का है, तो एक एडवोकेट है और एक इंजीनियरिंग कर रहा।
1: अच्छा,
2: हम
1: तो अपने,
2: हाँ हाँ, तो हम है तो हम इसको चला रहे हैं। अगर बच्चे लोग आना चाहते हैं तो हम तो कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा है, अपना घर में रहकर आप व्यवसाय कर सकते हैं, दूर जाने का जरूरत नहीं है, पढ़ लिख कर भी आप बड़ा पैमाने पर कर्ज ले जा सकते हैं इसको,
1: क्योंकि परिवार का व्यवसाय है
2: जी,
1: ज्यादा आगे इसमें भी बढ़ा जा
2: जी,
1: सकता है
2: जी।
1: चलिए कपिल देव जी, आपने इतनी अच्छी बात की, अपने व्यवसाय के बारे में बताया, अपनी चुनौतियों और संघर्ष की बातें हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: ठीक है, नमस्कार सर।
0: सभी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे एक भेंट वार्ता, विषय था ट्रंक, ड्रम और अलमारी निर्माण व्यवसाय स्वरोजगार का बढ़िया जरिया। भेंटवार्ताकार थे कपिल देव विश्वकर्मा और इनसे बातें कर रहे थे सूरज रजक। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस जानकारी का अवश्य लाभ लेंगे, और वैसे श्रमिक भाई जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, और वो प्रशिक्षण लेकर के अगर इस काम को करते हैं तो अपना भविष्य वो संवार सकते हैं इस कार्य के माध्यम से। और दोस्तों, अब कार्यक्रम से जाने का समय भी हो चला है, तो कार्यक्रम मेहनत कर से अपने रेडियो दोस्त प्रेमेंद्र कुमार मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:00 शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए सुनते कार्यक्रम का पहला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म बाजार से। आवाजें नेहा कक्कर और विशाल सईद की हैं।

0: एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। सुनते कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: इकबाल फिल्म में आइए सुनते हैं केके को।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल आर्थिक विकास में निभा सकती है अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

0: ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। बुजुर्गों और दिव्यांगों तक जानकारी पहुंचाने पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का ऐलान। अस्पतालों में हिंसा करने वालों पर राज्य सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। राज्य में पलाश दीदी कैफे का कारोबार 10 करोड़ रुपए के पार। 2000 से अधिक महिलाओं की आजीविका हुई मजबूत। और राष्ट्रीय खेल नीति के अनुरूप झारखंड राज्य कुश्ती संघ के नए बायलॉज को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी। चुनाव का रास्ता साफ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नवाचार और वैश्विक साझेदारियों के जरिए पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की ओर से लिखे एक लेख को साझा किया है। इस लेख में वित्त मंत्री ने बताया है कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पों को बाजार तक पहुंच हासिल करने और स्थायी आजीविका सृजित करने में मदद कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से कोई भी नागरिक जानकारी के अभाव में वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों से गणना प्रपत्र भरने, आवश्यक दस्तावेजों और समय सीमा की सही जानकारी हर घर तक पहुंचाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बीएलओ को लगातार प्रशिक्षण देने और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, आदिवासी समुदायों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक विशेष रूप से जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आम लोगों से नागरिक मतदाता सूची में अपनी सही और अद्यतन जानकारी सुनिश्चित करने की अपील की है। मंत्री आज गिरिडीह स्थित अपने आवासीय कार्यालय में अपना एन्यूमरेशन प्रपत्र भरकर जमा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
1: एसआईआर की प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण चरण के लिए मैं तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि एसआईआर की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में एनुमरेशन फॉर्म भरने में थोड़ी शीघ्रता दिखाएं, तो मुझको उम्मीद है कि प्रबुद्ध मतदाता मेरी तरह अपना एनुमरेशन फॉर्म भर के इस प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करें।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि अस्पतालों में हिंसा करने वालों पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मंत्री कल जामताड़ा सदर अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टरों और नर्सों के साथ मारपीट तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के बाद आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल हिंसा का नहीं बल्कि सेवा का केंद्र है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर धनबाद में युवा संगोष्ठी आयोजित की गई। संस्थान के उपनिदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्यों समेत पंच परिवर्तन के विषयों पर चर्चा हुई।
2: हमारा पंच परिवर्तन का कार्यक्रम था संघ की ओर से, और पंच परिवर्तन में युवाओं का योगदान, अगर आप बोलते हैं कुटुंब प्रबोधन, अगर आप बोलते हैं कि स्व का बोध और सामाजिक समरसता की भावना, पर्यावरण का मैनेजमेंट, ये सारी चीज हमारे युवा वर्ग से की तरफ से आनी चाहिए, उनमें उनकी सहभागिता की बहुत आवश्यकता है।
0: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि एक शिक्षित समाज ही मजबूत, जागरूक और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मंत्री आज रांची स्थित हज हाउस में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित कर रही थीं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने को लेकर विपक्षी दलों की चिंताएं हैं।
3: झारखंड में 2011 के सेंसस के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो एसटी सीट्स को काफी नुकसान होगा। तो अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं किसी सीट को नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे।
0: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि आज झारखंड में पलाश दीदी कैफे महिलाओं के आत्मविश्वास और उद्यमिता की नई पहचान बन चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि आज 2000 से अधिक महिलाएं कैटरिंग और सामग्री आपूर्ति के माध्यम से अपनी आजीविका सशक्त बना रही हैं। मंत्री ने कहा कि यह पहल 10 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर नई सफलता की इबारत लिख चुकी है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के इनामी नक्सली रविंद्र गंझू से पूछताछ के बाद आज पुलिस ने जंगल से एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 90 जिंदा कारतूस और एक नक्सली पाउच बरामद किया है। पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान नक्सली ने छुपाकर रखे गए हथियारों के ठिकानों की सटीक जानकारी दी।
4: इनके द्वारा बताया गया कि कहां से आप इनके ये हथियार छुपा के रखे हैं। इसी दौरान हम लोगों ने साइबरी करके रविंद्र गंझू के पास से एक स्वचालित AK-56 राइफल के साथ इसकी 2 मैगजीन, 90 चक्र जिंदा कारतूस और एक काले रंग का पाउच बरामद किया है।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में इस्कॉन द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना में भाग लिया। श्री सेठ ने मोरहाबादी के हरिहर सिंह रोड में योगामृत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज आगामी सावन पर्व को लेकर पहाड़ी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सावन माह में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा स्थित महादेव साल धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल ने मेले के दौरान महादेव साल स्टेशन पर 22 ट्रेनों को अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि ठहराव पाने वाली ट्रेनों में साउथ बिहार, उत्कल, इस्पात, समलेश्वरी, टाटा एनाकुलम और विभिन्न मेमू ट्रेनें शामिल हैं।
2: इसलिए रेलवेज ने यहाँ पे 22 ट्रेनों का टेम्पररी स्टॉपेज दिया है। जो रेगुलर स्टॉपेज है उसके अलावा 22 ट्रेनों की स्टॉपेजेस रहेंगी। स्टॉपेजेस 2 मिनट से लेकर 4 मिनट तक है, जिसमें श्रद्धालु आराम से उतर सकते हैं और रिटर्न के समय वो दूसरी ट्रेन से जा सकते हैं। वहाँ पे एडिशनल बुकिंग काउंटर्स लगाए जा रहे हैं।
0: रांची में झारखंड राज्य कुश्ती संघ के स्पेशल जनरल बॉडी बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति और भारतीय कुश्ती संघ के नियमों के अनुरूप तैयार नए बायलॉज को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में सभी 24 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वर्ष 2026 से 30 के लिए संघ के चुनाव कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की गई। इस बैठक में महासचिव रजनीश कुमार ने कहा कि नए बायलॉज लागू होने के संघ का संचालन राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप होगा और जिला इकाइयों में शीघ्र चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल आर्थिक विकास में निभा सकती है अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। बुजुर्गों और दिव्यांगों तक जानकारी पहुंचाने पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी का ऐलान, अस्पतालों में हिंसा करने वालों पर राज्य सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। राज्य में पलाश दीदी कैफे का कारोबार 10 करोड़ रुपए के पार, 2000 से अधिक महिलाओं की आजीविका हुई मजबूत। और राष्ट्रीय खेल नीति के अनुरूप झारखंड राज्य कुश्ती संघ के नए बायलॉज को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी, चुनाव का रास्ता साफ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रविंदर गंजू को गिरफ्तार किया है। झारखंड सरकार ने इस पर 15 लाख रुपए एवं एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसके पास से AK-56 समेत अन्य हथियार व गोली भी बरामद किया गया है। रविंद्र पर लातेहार, लोहरदगा एवं गुमला जिला के विभिन्न थाना में 154 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: आज रविंद्र गंजू जो RTM रैंक पर है और 15 लाख का इनाम इसके विरुद्ध झारखंड राज्य के द्वारा घोषित है और 5 लाख रुपए का इनाम NIA के द्वारा घोषित है, इसकी गिरफ्तारी हुई है।
1: वन विभाग द्वारा जिले के चंदवा प्रखंड में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रादेशिक वन प्रमंडल द्वारा इस वर्ष 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान 150 ग्रामीणों के बीच धुआं रहित चूल्हा और सोलर लैंप का वितरण किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राम ने कहा कि
3: लोग जो है कम से कम अब पेड़ लगाने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि भाई लोगों से मिले, उनको जागरूक करें।
1: मौके पर उपस्थित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल ने कहा कि
4: मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि लोग कम से कम 5 पेड़ लगाएं और पौधों का संरक्षण करें। अनावश्यक पौधों को काटे नहीं, जंगल में आग नहीं लगाएं। महुआ चिन्हने के क्रम में आग लगा देते हैं, काफी पौधे नष्ट हो जाते हैं।
1: लातेहार जिले के महुआ डान प्रखंड में भवन निर्माण विभाग एवं संवेदक के गठजोड़ से जामडी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का निर्माण स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इसे सेमरबुढ़नी गांव में बनाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। बताया जाता है कि सेमरबुढ़नी में पूर्व से ही स्वास्थ्य केंद्र है। इस मामले पर सोहर पंचायत की मुखिया अमृता देवी ने उपायुक्त से मिलकर आवेदन दिया है। मुखिया अमृता देवी ने कहा कि
5: जामडी में उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनना था उसको यहाँ सेमरबुढ़नी में बनाया जा रहा, जबकि वहाँ पूरे माल मटेरियल सब वहाँ गिरा दिया था। दो दिन भी हो गया था, पूरा केसिंग उसी निकाल कर चला करके लोग यहाँ बना रहा है सेमरबुढ़नी।
1: लातेहार जिला मुख्यालय में स्थित सीमा सुरक्षा बल की 32वीं वाहिनी द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। इसके तहत ड्राइविंग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर समेत अन्य क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट राजेश सिंह ने कहा कि
6: गृह मंत्रालय की योजनाओं के तहत हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस इलाके में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो कंप्यूटर सीख सकते हैं, उनको हम बेसिक सिखलाई कंप्यूटर का प्रदान करें ताकि उनको रोजगार का कोई ना कोई साधन हो।
1: लातेहार जिला मुख्यालय के धर्मपुर में स्थित महिला मॉडल डिग्री कॉलेज की हालत बदहाल है। यहां दो शिक्षक के भरोसे 500 से अधिक छात्राओं की पढ़ाई चल रही है। इसकी जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सुरेंद्र साहू ने कहा कि
7: शिक्षकों की जरूरत है, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई सार्थक पहल दिखाई नहीं दे रही मेरी।
1: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार।
0: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 MHz पर इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 7:14 और 54 सेकंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झनकार।

और भाई सुनते कार्यक्रम का आखिरी गाना जिसे हमने लिया है फिल्म दिल चाहता है, आवाजें महादेवन, शंकर महादेवन और साथियों की।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और 26 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की।

0: कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म जख्मी से, आवाजें लता मंगेशकर की। और इस गीत से पहले सुनते हैं कुछ कार्यक्रम संबंधी संदेश।
1: इक्कीस जुलाई जन्मदिन मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का।
2: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
1: इस खास मौके पर सुनिए आकाशवाणी हजारीबाग की विशेष प्रस्तुति आदमी मुसाफिर है।
2: आदमी मुसाफिर है।
1: फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी, जो साझा करेंगे मधुर स्मृतियां अपने पिता की। इक्कीस जुलाई मंगलवार सुबह 10 बजे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है।

0: अभी आप सुन रहे थे उड़ान फिल्म कुमार सानू और अलका याग्निक को। दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम ऑल टाइम हिट से यहीं समाप्त होता है।
1: It's 8 o'clock.
0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते कार्यक्रम का पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म तुम बिन से। आवाजें अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की हैं।

0: और अब कार्यक्रम का आखिर में ये सुनते हैं दिल चले फिल्म के इस गीत को।
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है पर आग तो मैं भी हूं।
0: अब अजय पूर्णिमा और अजय देवगन का है।

0: दोस्तों, दिलजले फिल्म के संगीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, न्यूज 8:09 और स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: मैं सर फिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन

0: का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन हैड टू बी गिविंग चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउड द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी

0: गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: इट इज द फर्स्ट एवर विजिट बाई एन इंडियन प्रेसिडेंट टू मोल्दोवा।
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: विच वुड हेल्प अस स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट्री रिलेशनशिप।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस

0: प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेस्सी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेस्सी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Center to develop over 160-kilometer long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388 run target for India in the third and final ODI at Lord's.

0: ये आकाशवाणी है। लोकसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता

0: और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, सीपीआईएम के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
1: देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी हैं, अपनी पार्टियां बना ली हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड हैं कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है, और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए ऑपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कंडक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में उनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी ही नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए कि ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेते, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न के परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करें।
0: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब

0: की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास हमारी आस्था का सा जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, उन्होंने नीट हमारे लिए इश्यू है, बेरोजगारी हमारे लिए इश्यू है, और ये लगातार जिन बातों को करे अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबिल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कर रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और एसआईआर का जो मुद्दा है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा यह सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: सीपीआईएम से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
2: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त किए है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटे बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गाँव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे हैं।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
3: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई, पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे ये लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं, हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। एक फर्जी एफआईआर, एक फर्जी एसआईटी का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था

0: के लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे E20 भरवाना चाहे उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे, यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
2: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग हैं थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नाकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नाकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
3: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है, क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है, क्या हम अंडमान निकोबार जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दिया वो राजनीति है, क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है, क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है, क्या हम अगर ईरान के साथ अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो ईरान, वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले हैं, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है, और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी रही है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है, और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं और SIT आपने गठन कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है उन पे आशा भरी निगाहों से, एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी के

0: सरकार भी है जो लोगों को चोरी करती है, मतलब एमपी चोरी करती है, एमएलए चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है, ये और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उस पर इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो जीरो अमेरिका का सामान आने पे होगा तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको भुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया, फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजॉरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग।
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, चूंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये

0: उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मॉनसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
1: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इसराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे, और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखे हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखें जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए किया, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
0: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूं जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहां पे हो वर्ल्ड रैंकिंग में? आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहां पे हो? हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहां पे हो? मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
0: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही, उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं, उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
0: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मानसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे, और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
1: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पोलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं, देश हित में काम करते हैं, और उनके लोग जो है, उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं, उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो, और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा, देश का फायदा है, तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पर जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है, और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
0: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फार्मेसी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत।

दोस्तों, जब वो पुराने सुनहरे गीत बजते हैं तो हर दिल पर एक मीठी सी शांति छा जाती है। आवाज में एक नरम अपनापन होता है, थकान को जो पिघला देता है। शब्दों में सादगी होती है लेकिन भावनाएं बहुत गहरी। सुनते सुनते मन हल्का होने लगता है और शाम एक दोस्त की तरह लगने लगती है, जो चुपचाप हमारे पास बैठ जाती है। बीते लम्हे फिर से याद आते हैं, लेकिन इस बार मन भारी नहीं होता, बस एक नरम सा सुकून और आराम रह जाता है। फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वीकार करें परमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार।

दोस्तों, आज हम आपके उन तमाम गीतों को इस कार्यक्रम में शामिल करना चाह रहे हैं और करने जा रहे हैं जो जिन गीतों को आपने सुनना चाहा है अपने खातों के माध्यम से।

तो अब देर किस बात की, कार्यक्रम का आगाज करते हैं सुहाग फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है SB बालासुब्रमण्यम और चित्रा ने, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। आप है चंद्रपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, ऋत्विक साहनी, निपी साहनी, अफजाल इब्राहिमी, श्रीमती साहिल सुताना, डॉक्टर तस्लीम कौसर और SM जावेद। सिमरारिस चौक बड़का गांव रोड हजारीबाग से आप है मानसी राज, ज्ञानसी राज, मिताली राज, प्रांजल राज, राजवी राज और उनके परिवार के सभी सदस्य। रातू राज रांची से आप हैं सच्चिदानंद दुबे, नटव निर्मोही, कुमार दिवाकर और सत्यम सावरिया। मेन रोड बड़का गांव से आप हैं दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके मम्मी पापा तथा ढेर सारे साथीगण। झुमरी तलैया से आप हैं जगन्नाथ प्रसाद साहू। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत का आनंद लेते हैं।

0: छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम से संबंधित कुछ खुशखबरी।
1: इक्कीस जुलाई जन्मदिन मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का।
2: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
1: इस खास मौके पर सुनिए आकाशवाणी हजारीबाग की विशेष प्रस्तुति आदमी मुसाफिर है।
2: आदमी मुसाफिर है।
1: फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी, जो साझा करेंगे मधुर स्मृतियां अपने पिता की। इक्कीस जुलाई मंगलवार सुबह 10 बजे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है।
0: कार्यक्रम आपकी चाहत में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म सिंह इज किंग से। आवाजें लाभ जामजुआ और सुजी की हैं और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। धनबाद से आप हैं प्रभात रंजन प्रसाद, सुबह रंजन प्रसाद, रितेश रंजन प्रसाद, स्वाति रंजन प्रसाद और प्रतिभा रंजन प्रसाद। हजारीबाग पतरातू से आप हैं बेसील खलको, सेसील खलको, मधु, रितु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, सचिन, नदीम, ललिता एवं समस्त परिवार। चेपा कला बड़का गांव से आप हैं बाबूलाल ठाकुर, श्रीमृति सबिया ठाकुर, दिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जीतेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका। ग्राम बड़का काना पोचरा से आप हैं महेश राम, सरिता देवी, पिंटू, वर्षा, बरखा, सविता, छोटू, फुलवासी देवी और छोटे। ग्राम मानगढ़ चौपारण से आप हैं मिथिलेश पांडे, मनोज चंद्रवंशी, मुकुंद राणा, घनश्याम राणा, बद्री चंद्रवंशी, वंग डब्लू, लखन अंशु, किशोरी अकेला ने इस गीत को सुनना चाहा है।

और दोस्तों जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म सिम्बा से, आवाजें राहत फतेह अली खान, आशीष कौर और साथियों की है। इस गीत के ख्वाहिशमंद आपसे श्रोता हैं जामा मस्जिद रोड।

से आप हैं महावीर लाल चौरसिया, कुंती देवी, अनंत चौरसिया, आकाश चौरसिया, संगीता देवी, पूजा देवी, जागृति कुमारी, कृष्णकांत और अश्मित राज। खिरगांव माली टोला से आप हैं कल्लू मालाकार, अरविंद मालाकार, अनिकेत मालाकार, आदर्श मालाकार, अमन मालाकार और आशा देवी मालाकार। माली टोला खिरगांव से आप हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, चिकित्सेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। पंचमती रोड से आप हैं कला मोहम्मद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, कहकशा परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, सबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। बक्सर बिहार से आप हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, प्यारीनाज, बाबू असलम, बाबू अकरम और बाबू अल्ताफ। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते कार्यक्रम के अगले गीत को, फिल्म सिम्बा से।

0: 21 जुलाई जन्मदिन मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का।
1: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
0: इस खास मौके पर सुनिए आकाशवाणी हजारीबाग की विशेष प्रस्तुति आदमी मुसाफिर है।
1: आदमी मुसाफिर है।
0: फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी, जो साझा करेंगे मधुर स्मृतियां अपने पिता की। इक्कीस जुलाई मंगलवार सुबह 10 बजे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है।
2: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हजारीबाग को और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी चाहत। दोस्तों, कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जो गीत, उसे हमने लिया है फिल्म सौतन से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। जीटी बरही रोड से आप सीताराम मालाकार, वासुदेव मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी, कुसुम और आर्यन। रेलवे स्टेशन हजारीबाग से आप हैं शमीम अहमद, निखत परवीन, खलील अहमद, आरजू परवीन, नसीम अहमद, सबाना परवीन, एहसान अहमद और नूरजहां बेगम। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तरनी ठाकुर, सूरज ठाकुर और ज्योति। बगबुड़ा पथरिया से आप हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, मिलिंद देवेश नेताम, अंबिका और योगी नेता। खपरियावां से आप हैं सुमन मिश्रा, हेमलता मिश्रा, सुहानी बाबू, उषा मिश्रा, दीपक मिश्रा, संजय मिश्रा, बिंटू मिश्रा, सपना मिश्रा, मिथिलेश मिश्रा और टोनी मिश्रा। सिरसी से आप हैं बादशाह राम, नवराज राम, प्रदीप पासवान, शैलेंद्र मिश्र, परवील पासवान, टोमेश पासवान, रामरिच राम, रामदीप पांडे और अभिषेक पासवान ने इस गीत को सुनना चाहा है।

जाते जाते कार्यक्रम का पता आप नोट कर लीजिए दोस्तों। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग पिन संख्या 825301 पोस्ट बॉक्स संख्या 1। इसी पते पर आपके खतों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र को दीजिए कार्यक्रम आपकी चाहत से इजाजत। नमस्कार।

0: एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: इक्कीस जुलाई जन्मदिन मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का।
2: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
1: इस खास मौके पर सुनिए आकाशवाणी हजारीबाग की विशेष प्रस्तुति आदमी मुसाफिर है।
2: आदमी मुसाफिर है।
1: फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी, जो साझा करेंगे मधुर स्मृतियां अपने पिता की। इक्कीस जुलाई मंगलवार सुबह 10 बजे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है।
0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम सामी गजल।

रात की खामोशी में सुकून मिल जाता है, रात की खामोशी में सुकून मिल जाता है, चांद की चांदनी से हर गम ढल जाता है।

तारों की महफिल मन को बहला देती है, मीठे ख्वाबों का कारवां फिर चला जाता है। हर नई सुबह उम्मीद की किरण लाती है, अंधेरा फिर भी आखिर उजाले में बदल जाता है।

रात की चादर तानी सन्नाटे ने, दिल की धड़कन बन गई एक तराने से, हर सांस में छुपा जिक्र उसी का, जो मिला नहीं पर बसा है मनाने में।

चांद ने पूछा मेरा हाले दिल, मैंने कहा बस उसकी याद आने दे। हवा में एक नमी सी घुल जाती है जिसे खुदा भी सुन रहा हो तेरी दुआ। इस खामोशी में भी एक आवाज है जो कहती है सब्र कर, ये रात भी कट जाएगी। दोस्तों, गजलों का कार्यक्रम सामे गजल में आज बस इतना ही।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज

0: देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engaging in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people.